0: से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए किर्गिस्तान के बिश्केक पहुंचे। सम्मेलन से इतर संगठन के कई नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की आर्थिक विकास दर 7% या उससे अधिक रहने की संभावना। नेपाल में बाढ़ के कारण मृतकों की संख्या बढ़कर 794 हुई, 2500 से अधिक लोग अब भी लापता। अमेरिकी सेना ने होर्मुज जलडमरू मध्य में लड़ाक द्वीप पर ईरान के रॉकेट लॉन्चरों पर हमले किए। जवाब में ईरान ने पश्चिम एशिया में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया। और दुबई में महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में भारत ने अपने आरंभिक मैच में थाईलैंड को 94 से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल किर्गिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन SCO के 26वें शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे कल राष्ट्राध्यक्षों के सत्र में भी भाग लेंगे। श्री मोदी किर्गिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर कल बिश्केक पहुंचे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिश्केक में सबसे पहले फ्रेंड्स ऑफ इंडिया के साथ संवाद करेंगे। इसके बाद वे महात्मा गांधी मेमोरियल पार्क जाकर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। इस प्रतिमा का अनावरण श्री मोदी ने वर्ष 2015 की अपनी किर्गिस्तान यात्रा के दौरान किया था। प्रधानमंत्री आज शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के अनेक नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। इनमें आर्मेनिया, किर्गिस्तान और ईरान के राष्ट्रपति के साथ ही रूस के राष्ट्रपति के साथ होने वाली द्विपक्षीय बैठक भी शामिल है। श्री मोदी आज 6ठे विश्व नॉमेड खेलों के उद्घाटन समारोह में भी शामिल होंगे। ये आयोजन मध्य एशिया की समृद्ध जीवंत सांस्कृतिक विरासत का उत्सव है। प्रधानमंत्री कल 1 सितंबर को शंघाई सहयोग संगठन की 26वीं बैठक को संबोधित करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए बिश्केक से मैं विकल्प शुक्ला।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान यात्रा कल संपन्न हो गई। हमारे संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी और राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव की बातचीत के अलावा इस यात्रा की कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां रहीं।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान यात्रा के मायने 11 समझौतों पर हस्ताक्षर से कहीं बढ़कर हैं। महत्वपूर्ण खनिजों और यूरेनियम की सप्लाई से लेकर व्यापार, रक्षा, डिजिटल भुगतान और शिक्षा तक, हिंदी और संस्कृत से लेकर खेल और विरासत संरक्षण तक इस 2 दिवसीय यात्रा ने भारत

0: भारत उज्बेकिस्तान संबंधों को एक विस्तृत और व्यापक ढांचा प्रदान किया है। व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक संबंधों का बढ़ना, $5 अरब के व्यापार लक्ष्य को 3 साल के भीतर हासिल करने का संकल्प, दीर्घकालिक ऊर्जा सहयोग और राज्य एवं नगर स्तर पर अधिक सहभागिता से भारत की उज्बेकिस्तान के साथ दोस्ती को एक नई गति मिलने की उम्मीद है। यात्रा का एक शानदार पल तब आया जब राष्ट्रपति शौकत मिर्जियेव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च राजकीय सम्मान ओली दराजली दोस्तलिक पुरस्कार प्रदान किया। ये पुरस्कार भारत उज्बेकिस्तान संबंधों और सहयोग को मजबूत करने में उनके योगदान को रेखांकित करता है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की आर्थिक विकास दर 7% या उससे अधिक रहने की संभावना है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के बाद के वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था ने जिस गति को हासिल किया है वो आगे भी जारी रहने की उम्मीद है। अमेरिका दौरे पर वित्त मंत्री ने शिकागो में भारतीय समुदाय से कहा कि भू राजनीतिक अनिश्चितताओं और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधानों के बावजूद भारत अपनी आर्थिक विकास की रफ्तार बनाए रखेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और YouTube पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। नेपाल में भीषण बाढ़ के बाद त्रिशूली 3A सहित कई जल विद्युत परियोजनाओं की सुरंगों में फंसे सैकड़ों लोगों को निकालने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं।
3: भारत और चीन के विशेषज्ञों सहित बचाव दल सुरंग के अंदर फंसे लोगों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। लापता 2500 लोगों में से सैकड़ों लोग नेपाल की जल विद्युत परियोजना के कर्मचारी बताए जा रहे हैं। बुधवार की इस आपदा में नेपाल में मृतकों की संख्या 794 हो गई है। तिब्बत में आधिकारिक तौर पर मृतकों की संख्या 16 है, जबकि 546 लोग लापता है। त्रिशूली नदी में फिर से बाढ़ के कारण मध्य नेपाल में एक झूलता हुआ पुल बह गया। पुल के बह जाने से गंडकी ग्रामीण नगर पालिका 7 और 8 के निवासियों का पृथ्वी राजमार्ग से संपर्क टूट गया है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: नेपाल में भीषण बाढ़ के कारण बिहार में गंडक और कोसी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। नदी के बहाव को नियंत्रित करने के लिए वाल्मीकि नगर बैराज के सभी 36 गेट और कोसी बैराज के 20 गेट खोल दिए गए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटों में दोनों नदियों के जलस्तर में कमी आई है।
4: सोशल मीडिया पर चल रही भ्रामक खबरों के बीच सुपौल जिला प्रशासन ने कहा है कि कोसी नदी के जलस्तर में सामान्य गति से वृद्धि हो रही है और कोसी बैराज पूरी तरह सुरक्षित है। स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। वहीं जलस्तर बढ़ने की आशंका को देखते हुए पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सारण और गोपालगंज जिलों में प्रशासन को अलर्ट पर रखा गया है। जिला संसाधन विभाग ने इंजीनियरों को लगातार तटबंधों की निगरानी के निर्देश दिए हैं। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: उड़ीसा में आज एक बार फिर मूसलाधार बारिश होने की संभावना है, क्योंकि उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में बना मौसम राज्य को प्रभावित कर रहा है।
5: IMD ने कई जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश और कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा बारिश का अनुमान लगाया है। आज बरगढ़ के लिए रेड वार्निंग जारी की गई है, जबकि सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, संबलपुर, देवगढ़, अनगोल, केउझर, सुवर्णपुर, नुआपड़ा, बलांगीर और कलाहंडी के लिए ऑरेंज वार्निंग है। IMD ने चेतावनी दी है कि भारी बारिश से संवेदनशील इलाकों में स्थानीय स्तर पर बाढ़, जल जमाव और नदियों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो सकती है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में भी मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और उत्तराखंड में भी दिन के समय तेज बारिश होने की उम्मीद है। वहीं असम, मेघालय, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी आज मूसलाधार बारिश हो सकती है। अमेरिका ने कल रात होर्मुज जलडमरू मध्य में लद्दाख द्वीप पर ईरानी सैन्य ठिकानों पर हमला किया। अमेरिकी सेना ने लद्दाख द्वीप पर 2 ईरानी लॉन्चरों को निशाना बनाया, क्योंकि ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के सैनिकों को होर्मुज जलडमरू मध्य में समुद्री बारूदी सुरंगों वाले रॉकेट लॉन्च करने की तैयारी करते देखा गया था। ईरान के सरकारी प्रसारक ने खबर दी है कि इस हमले में कई ईरानी सैनिक और आम नागरिक मारे गए और घायल हुए। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर मिसाइलें दागी। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने जॉर्डन में किंग हुसैन और अल अजराक अमरीकी ठिकानों पर हमला किया। भारतीय नौसेना आज मुंबई स्थित निस्तार श्रेणी के दूसरे गोताखोरी सहायता पोत DSV निपुण को शामिल करने जा रही है।
6: विशाखापट्टनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड

0: द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित पोत निपुण रक्षा पोत निर्माण में भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। निपुण एक विशेष पोत है जिसे गोताखोरी और गहरे समुद्र में अभियान सहायता के लिए तैयार किया गया है। यह आधुनिक गोताखोरी प्रणालियों और जलमग्न बचाव क्षमताओं से सुसज्जित है और समुद्र में चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में काम करने वाले गोताखोरों को निरंतर सहायता प्रदान करने में सक्षम है। यह पोत पनडुब्बी बचाव अभियानों में भी भारतीय नौसेना की क्षमता को बढ़ाएगा। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT के संयुक्त दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर देश भर के 18 NIFT परिसरों से पास होने वाले छात्रों को डिग्रियां दी जाएंगी। पश्चिम बंगाल सरकार अभूतपूर्व कदम उठाते हुए जनता की शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए सरकारी कार्यालयों में जनता दरबार शुरू करने जा रही है। मुख्य सचिव मनोज अग्रवाल ने जिला और ब्लॉक स्तर के जमीनी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे प्रत्येक मंगलवार और गुरुवार को सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक जनता से मिलें। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज से 2 सितंबर तक मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के दौरे पर रहेंगे। अपने 3 दिवसीय दौरे के दौरान वे शिवपुरी, कोलारस और पिछोर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पहले दिन वे अछरौनी और बामौर कला में स्वास्थ्य केंद्रों, बिजली उप स्टेशनों और एक उप तहसील कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। दुबई में महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में भारत ने जीत के साथ शुरुआत की है। भारत ने थाईलैंड को 94 रन से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 9 विकेट पर 169 रन बनाए। शेफाली वर्मा ने 64 रन की शानदार पारी खेली। थाईलैंड की पूरी टीम 15 ओवर और 3 गेंद में 65 रन पर सिमट गई। शेफाली वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में कल एक सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार अलीपुरद्वार के रहने वाले 2 लोग मोटरसाइकिल से दार्जिलिंग घूमने आए थे। रास्ते में मोटरसाइकिल का संतुलन बिगड़ गया और उसने सड़क पर चल रहे एक स्थानीय व्यक्ति को टक्कर मार दी। बाइक पर पीछे बैठे व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक चलाने वाले और स्थानीय व्यक्ति को गंभीर चोटें आईं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में बैंकिंग और क्रेडिट तक पहुंच के माध्यम से वित्तीय समावेशन बढ़ाने और नागरिकों को सशक्त बनाने पर ज्ञानवर्धक परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में विशेषज्ञों से विशेष संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए टेलीफोन नंबर है 0111-3401-0111-3401-3144। आप अपने प्रश्न व्हाट्सएप नंबर पर भी भेज सकते हैं। नंबर है 9289094044। सवाल #AskAIR के साथ एक्स पर भी पोस्ट किए जा सकते हैं। ये आकाशवाणी है।
2: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी एक्स पर @AIRNews हिंदी और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है विशाल शर्मा।
3: धन्यवाद फरहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान यात्रा के दौरान कई समझौतों पर हस्ताक्षर की खबर आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित की है। अमर उजाला लिखता है, लंबे समय तक भारत को यूरेनियम देगा उज्बेकिस्तान, 2030 तक सालाना द्विपक्षीय कारोबार $5 अरब पहुंचाने का लक्ष्य। रूस को पेट्रोल निर्यात करने वाला प्रमुख देश बना भारत, जनसत्ता की खबर है। पत्र लिखता है, भारतीय रिफाइनरी ने की पिछले 2 माह में रूस को करीब 10 लाख बैरल पेट्रोल की आपूर्ति। भारत द्वारा नेपाल को राहत सामग्री पहुंचाने से जुड़ा समाचार दैनिक जागरण ने सचित्र दिया है। पत्र लिखता है, नेपाल का सबसे भरोसेमंद मददगार बना भारत, 4 विमानों से 68.5 टन राहत सामग्री पहुंची, सुरंग बचाव विशेषज्ञ और फॉरेंसिक टीमें भी युद्ध स्तर पर जुटी। नक्सल मुक्त बस्तर को अब हथियार और विस्फोटक डंप फ्री करने में जुटी फोर्स, नारायणपुर के जंगल में राइफल बैरल ग्रेनेड लॉन्चर BGL विस्फोटक का डंप जब्त, राजस्थान पत्रिका की खबर है। देहरादून की गुनगुन ने कैंसर को हराकर सौंदर्य का ताज जीता। अहमदाबाद में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की सौंदर्य प्रतियोगिता P&I इंडिया 2026 का खिताब जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया, हिंदुस्तान की सुर्खी है। पत्र के अनुसार 2027 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करेंगी भारत का प्रतिनिधित्व।
1: धन्यवाद विशाल। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए किर्गिस्तान के बिश्केक पहुंचे। सम्मेलन से इतर

संगठन के कई नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की आर्थिक विकास दर 7% या उससे अधिक रहने की संभावना। नेपाल में बाढ़ के कारण मृतकों की संख्या बढ़कर 794 हुई, 2500 से अधिक लोग अब भी लापता। अमरीकी सेना ने

0: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं। सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
1: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
0: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
1: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
2: सखी सहेली।
3: श्रोताओं, आपको बता दें कि कार्यक्रम चल रहा था चित्रलोक, और आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं। और आज है अमृता प्रीतम का जन्मदिन। अमृता प्रीतम हिंदी और पंजाबी साहित्य की महान कवित्री, लेखिका और उपन्यासकार थी, और आज ही उनका जन्मदिन है। उन्होंने अपने साहित्य में प्रेम, विरह, स्त्री मन और मानवीय संवेदनाओं को गहराई से अभिव्यक्त किया, जो कि इनकी रचनाओं में दिखता भी है। उनकी प्रसिद्ध कविता अज आखा वारिस शाहनू विभाजन के दर्द की मार्मिक अभिव्यक्ति है। पिंजर उनका प्रसिद्ध उपन्यास है, जिसे साहित्य की कालजयी कृतियों में गिना जाता है। उनकी आत्मकथा रसीदी टिकट ने साहित्य जगत में विशेष पहचान बनाई। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार और पद्म विभूषण सहित अनेक सम्मान मिले। उनकी लेखनी में स्त्री की स्वतंत्रता, आत्मसम्मान और अपने अस्तित्व की तलाश प्रमुख रही। अमृता प्रीतम आज भी अपनी संवेदनशील और बेबाक लेखनी के कारण साहित्य प्रेमियों के दिलों में जीवित हैं।

0: अभी आपने सुना स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म का गाना, श्रेया घोषाल, विशाल ददलानी, शेखर रविजियानी, उदित नारायण की आवाजों में, गीतकार अन्विता दत्त, संगीतकार विशाल शेखर।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

अभी आपने सुना बॉर्डर फिल्म का गाना सोनू निगम और पलक मुच्छल की आवाज़ों में, गीतकार जावेद अख्तर और मनोज मुंतशिर की और संगीतकार अनु मलिक और मिथुन। कार्यक्रम चित्रलोक में समय हो चला है एक अंतराल का, तो अंतराल के बाद फिर आप सभी का स्वागत है।

0: बिनी एंड फैमिली फिल्म का गाना सुनिधि चौहान की आवाज, गीतकार एस संजय त्रिपाठी, संगीतकार ललित पंडित।
1: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
2: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
1: जुलवा में बहुत मेमोरेबल

0: रोल किया उन्होंने। उसके बाद एक झुंझ वारियाशी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक।
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
1: जी।
0: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

अभी आपने सुना योद्धा फिल्म का गाना, अरिजीत सिंह और नीति मोहन की आवाज, गीतकार कुणाल वर्मा, संगीतकार तनिष्क बागीची।

अभी आपने सुना डेढ़ बीघा जमीन फिल्म का गाना, जुबिन नौटियाल की आवाज, गीतकार अर्को और संगीतकार अर्को। तो दोस्तों, समय चितलोक कार्यक्रम का अब धीरे धीरे समाप्त की ओर है। तो आप सभी को मंजरी वर्मा का नमस्कार, दीजिए कार्यक्रम से इजाजत और सुनते हैं अगले प्रोग्राम को। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

ध्वनि तरंगों की ताल पर आप हैं विविध भारती के संग देश का नंबर 1 मनोरंजन चैनल। थोड़ी ही देर में सुनिए आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान
2: और बीच में एक गैप था, लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन संगीत।

0: आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें एक ऐसे अभिनेता की जिसके रुपहले पर्दे पर आते ही न जाने कितने दिल धड़क जाते थे। जी हाँ, वो हैंडसम तो थे पर वो हीरो नहीं थे, और ये जो दिल धड़कते थे ये रोमांच में नहीं धड़कते थे बल्कि किसी आशंका में धड़कते थे। क्योंकि आज के फनकार कार्यक्रम में आज हम बातें कर रहे हैं हिंदी फिल्म संसार के एक खूंखार और दबंग विलेन की, जिनका नाम है के एन सिंह।
1: मैं कहता हूं छोड़ दो से,

0: दुनिया के सामने चले जाइए।
1: के एन सिंह का जन्म 1 सितंबर 1908 को देहरादून में हुआ था। के एन सिंह का पूरा नाम था कृष्ण निरंजन सिंह। पिता चंडीदास एक जाने माने क्रिमिनल लॉयर थे और चाहते थे कि बेटा भी उनकी तरह एक क्रिमिनल लॉयर ही बने, पर ऐसा न हुआ। के एन सिंह पढ़ने के लिए लखनऊ भेजे गए। वहां उनकी दोस्ती हो गई कुंदन लाल सहगल से।

पढ़ाई खत्म करके केएन सिंह देहरादून आ गए। पिता चाहते थे कि बेटा जल्दी से अपने पैरों पर खड़ा हो जाए और बेटे ने भी कई काम आजमाए। कृष्ण निरंजन ने कभी लाहौर जाकर प्रिंटिंग प्रेस स्थापित कर दिया तो कभी राजे रजवाड़ों के पालने के लिए जंगली जानवरों की सप्लाई की। इसके अलावा फौज में खुखरी की सप्लाई का धंधा भी किया, पर ये कोई भी कारोबार उनके मन के मुताबिक नहीं था, इसलिए एक भी काम में कृष्ण निरंजन जमे नहीं। इस तरह से पिता परेशान होते रहे कि न जाने ये बेटा आगे चलकर क्या करेगा, किसी काम में इसका मन नहीं लग रहा है। इससे तो अच्छा ये होता कि ये लंदन जाकर बैरिस्टर की पढ़ाई करता और मेरी तरह वकील बन जाता। पिता ने ये सोचा कि किसी तरह से इस लड़के को जिम्मेदार बनाया जाए और इस तरह से सन 1930 में कृष्ण निरंजन की शादी करवा दी गई।

शादी के कुछ दिन के बाद कृष्ण निरंजन ने केसर या जाफरान की सप्लाई का धंधा शुरू किया। ये काम फलने फूलने लगा, परिवार में खुशियां लौट आईं। पिता को लगा कि बेटा अपनी जिंदगी में जम रहा है। पर इसी दौरान कृष्ण निरंजन की पत्नी बीमार पड़ गईं। ये वो दौर था जब चिकित्सा सुविधाएं उतनी उपलब्ध नहीं थीं और इंजेक्शन आम आदमी तक नहीं पहुंचा था। जब तक पत्नी की बीमारी की सही वजह पता चलती, पत्नी का निधन हो गया। पत्नी की बीमारी और उसके इलाज में उलझे के एन सिंह अपने कारोबार पर ध्यान नहीं दे पाए और उनके साझीदारों ने उनके बिजनेस पर कब्जा जमा लिया। इसके बाद जैसे तैसे के एन सिंह ने एक नया काम शुरू किया। उन्होंने एक अंग्रेज लड़की के साथ मिलकर रुड़की में एक स्कूल खोला, पर वो भी नहीं चल पाया। फिर बासमती चावल की सप्लाई का धंधा शुरू किया, वो भी नहीं चला। इसके बाद हुआ ये कि के एन सिंह खेलों के मैदान की तरफ मुड़ गए। सन 1936 के बर्लिन ओलंपिक्स के लिए वो जेवलिन थ्रो और शॉटपुट स्पर्धाओं के लिए भारतीय टीम में चुने गए थे। पर एन मौके पर हुआ ये कि उनकी बहन की आंख का ऑपरेशन किया जाना था। चूंकि उनके जीजाजी उपलब्ध नहीं थे और के एन सिंह कुछ खास कर नहीं रहे थे, इसलिए उन्हें भेज दिया गया कोलकाता बहन का इलाज करवाने में मदद करने के लिए। इसी वजह से के एन सिंह 1936 के बर्लिन ओलंपिक में हिस्सा नहीं ले पाए। चूंकि के एन सिंह कोलकाता जा रहे थे तो एक दोस्त ने पृथ्वीराज कपूर के नाम एक चिट्ठी लिखकर दे दी और ये कहा कि हो सकता है इस तरह तुम्हारा कोई काम बन जाए।

के एन सिंह को याद आया कि यहाँ तो उनके बचपन का दोस्त कुंदन लाल सहगल भी है जो फिल्मों में स्टार बन चुका है। के एन सिंह ने पृथ्वीराज कपूर और कुंदन लाल सहगल से मुलाकात की। पृथ्वीराज कपूर ने के एन सिंह को देवकी बोस से मिलवाया। देवकी बोस उन दिनों चंडीदास, पूरन भगत, राजरानी मीरा जैसी कामयाब फिल्में बना चुके थे और अपनी बांग्ला फिल्म सुनार संसार का हिंदी संस्करण बना रहे थे। सन 1936 सुनहरा

सार फिल्म के जरिए के एन सिंह की फिल्म यात्रा शुरू हुई। इस फिल्म में उन्होंने एक डॉक्टर की छोटी मोटी भूमिका निभाई थी। बस यहां से खेल का मैदान पीछे छूट गया और कुंदन लाल सहगल फिल्मों में रमने लगे। ए आर कारदार को कुंदन लाल सहगल बड़े पसंद आए। वो उन्हें अपने साथ कोलकाता से मुंबई ले आए और सन 1938 में फिल्म बागबान में उन्हें एक्टिंग का मौका दिया। ये फिल्म 50 हफ्ते चली और के एन सिंह जम गए। के एन सिंह की बड़ी बड़ी डरावनी आंखें, देर तक पलके न झपकाना, कोट पैंट टाई हैट और मुंह में पाइप या सिगार, कुल मिलाकर ऐसी शख्सियत बनती थी जो काफी असरदार, दबंग और डरावनी थी। बस इन्हीं तेवरों की वजह से के एन सिंह विलेन के रोल करने लगे। सन 1951 में राज कपूर की फिल्म आवारा में उन्होंने जग्गा डाकू की भूमिका निभाई।

0: अपने इंटरव्यूज में वो जगह डाकू की भूमिका के लिए ख्वाजा अहमद अब्बास की बड़ी तारीफ किया करते थे। वो ये कहते थे कि रोल इतना अच्छा लिखा गया था कि तारीफ उन्हें मिलती रही इस भूमिका को निभाने के लिए। राज कपूर की फिल्म बरसात में के एन सिंह ने भूलू का किरदार निभाया था।
1: अरे जिंदा तो है अभी। देख पंजनारे के 8-10 फूल तोड़ ला और बूटी मिलते ही उल्टे पर लौटा। लेकिन देख बूटी जा चुका कर लाइयो। हाँ जल्दी से आ जल्दी।

0: भाई ये काम तो खत्म हो चला, तू जरा अच्छी तरह इसका ध्यान रखियो। हाँ ये लिप सूख जाए तो और लगा देना। मैं शाम को आऊंगा, जरा मेरा हाथ धुलाइयो भाई।
1: मगर कहाँ जाओगे वैसे जी से इस तरह छोड़कर?
0: नगीने की शादी कराने जा रहा हूँ, अब तो पक्के मुहूर्त का वक्त आ गया।
2: नगीने शादी?
1: बैद जी।
2: बैद जी। बैद जी।
0: अरे कुछ कहेगा भी?
2: मेरी शादी कभी नहीं हो सकती।
0: अरे जाली तुझसे शादी करके कौन अपने हड्डियों को चूर कराएगी?
2: अभी पक्की नहीं तो कच्ची शादी करा दो, क्यों बैद जी?
0: अच्छा अच्छा इंतजार करो, तेरे लिए भी भगवान कहीं से छप्पर फाड़ के भेज देंगे तो फिर हो जाएगी तेरी भी शादी।
3: बैद जी अगर छप्पर के बजाय पानी के रास्ते भेज दे तो कोई हरज
0: है? ठीक है भेज देंगे।
2: ये कितने दिनों में जिंदा हो जाएगी?
0: बस ये कोई 15-20 दिन।
2: बैद जी भगवान भी कुछ जरूर है,
0: क्यों
2: देख लो दरिया में बहाकर भेज दी उसने बहु मेरे लिए।
0: हाँ भाई सुना तो था कि जब भगवान देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं, लेकिन आज तो उन्होंने दरिया फाड़ कर दे दी तुम्हें ये परी।

0: मैं जी थोड़ी खूबसूरत क्यों?
1: हाँ भाई, ये तो अपनी अपनी किस्मत की बात है। मुझे तो जिन वाली कहानी याद आती है जो कोकाब के परी को उठा ला।
2: शक्ति सामंत को के एन सिंह बड़े पसंद थे, इसलिए अपनी हर फिल्म में वो उनके लिए कोई ना कोई रोल जरूर रखा करते थे। फिल्म इंस्पेक्टर, बद्री प्रसाद की भूमिका। फिल्म हावड़ा ब्रिज, प्यारे लाल की भूमिका। फिल्म एन इवनिंग इन पेरिस, के एन सिंह नजर आए जैक की भूमिका में। हुआ ये कि अपने दबंग अभिनय की वजह से के एन सिंह चोटी के खलनायक बन गए। उनकी गिनती प्राण, कन्हैया लाल और जीवन जैसे खलनायकों के साथ होने लगी। आगे चलकर प्रेम चोपड़ा, रणजीत, अजीत, अमजद खान, डैनी और न जाने कितने खलनायक आए, पर के एन सिंह एक छोटी के खलनायकों के रूप में गिने जाते रहे।

0: फिल्म हुमायूं में महबूब खान ने उन्हें एक दिलचस्प किरदार दिया था। अशोक कुमार के साथ वो नजर आए चलती का नाम गाड़ी में।
1: अजय सुनाओ सरदारा, क्या हाल है?

0: अरे वाह, अरे वाह वाह वाह वाह।
1: शक्ति सामंत की फिल्म हावड़ा ब्रिज के एन सिंह की यादगार फिल्म है।

चिनप्पा देवर की फिल्म हाथी मेरे साथी, गुरुदत्त के साथ फिल्म बाजी, राज खोसला की वो कौन थी, फिल्म आम्रपाली में के एन सिंह बलभद्र सिंह की एक जबरदस्त भूमिका में नजर आए थे, फिल्म दूल्हा दुल्हन में वो बने थे ठाकुर धर्म सिंह, फिल्म मेरा साया में वो वकील की भूमिका में थे।

इस कार्यक्रम में शामिल किए गए थे उन फिल्मों के गाने जिनमें के एन सिंह एक जबरदस्त भूमिका में नजर आए। फिल्म पगला कहीं का में वो मैक्स की भूमिका में नजर आए। सन 1938 में आई फिल्म सुनहरे दिन से लेकर 90 के दशक तक तकरीबन 55 सालों का लंबा करियर रहा कृष्ण निरंजन सिंह का, और वो लोगों के दिलों पर राज करते रहे। किसी भी फिल्म में जब के एन सिंह की एंट्री होती तो लोगों का दिल थक से रह जाता कि अब कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर होने वाला है। 50 और 60 के दशक में तो के एन सिंह जबरदस्त कामयाबी की लहर पर सवार थे, पर हर कामयाबी की लहर एक दिन खत्म भी होती है। ऐसा भी हुआ कि आखिरी दिनों में उनकी आंखों की रोशनी कमजोर हो गई थी। के एन सिंह के करियर का कमाल देखिए कि फिल्मों की कई पीढ़ियों ने उनके साथ काम किया। पृथ्वीराज कपूर के साथ उन्होंने काम किया तो राज कपूर के साथ भी, और सन 1975 में राज कपूर के बेटे ऋषि कपूर के साथ भी वो नजर आए रफू चक्कर में। जहां कुंदनलाल सहगल, मोतीलाल, दिलीप कुमार, देव आनंद और गुरुदत्त के साथ काम किया, वहीं सुनील दत्त और मनोज कुमार के साथ भी काम किया। यहां तक कि उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ भी काम किया फिल्म कालिया में। सन 1983 में फिल्म कालिया आई। यहां तक अभिनय से के एन सिंह का मन पूरी तरह से उचाट होने लगा था। चूंकि उनकी कोई संतान नहीं थी, उन्होंने अपने भतीजे पुष्कर को बेटे की तरह पाला और आखिरी दिनों में उसी ने उनकी देखभाल की। सन 1999 में वे फिसल कर गिर गए और पैर की एक हड्डी टूट गई। इसके बाद 31 जनवरी सन 2000 तक वो केवल बिस्तर पर ही रहे बीमारी की अवस्था में। सन 2000 में 31 जनवरी को इस कद्दावर अभिनेता ने इस असार संसार को अलविदा कह दिया। फिल्म अजूबा सन 1991 में आई थी और ये के एन सिंह की आखिरी फिल्म बन गई।

0: शूद आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
1: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
2: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
1: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
2: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
1: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
2: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
1: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
2: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: ఆకాశవాణి వివిధ భారతి కేంద్రం, సమయం 10 గంటలు కావస్తుంది. మరికొన్ని మరికాసేపట్లో వార్తల ముఖ్యాంశాలు వింటారు.

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किर्गिजिस्तान की अपनी दो दिन की यात्रा के पहले दिन राजधानी बिश्केक में फ्रेंड्स ऑफ इंडिया के साथ संवाद किया। इस अवसर पर योग, मानस अकादमी सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारत के साथ मिलकर कार्य करने वाले 4 प्रतिनिधिमंडल मौजूद थे। इसके बाद प्रधानमंत्री ने बिश्केक स्थित महात्मा गांधी मेमोरियल पार्क में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री आज शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। इनमें रूस, ईरान, किर्गिजिस्तान और आर्मेनिया के राष्ट्राध्यक्षों के साथ होने वाली द्विपक्षीय बैठकें शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी कल शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इससे पहले उज्बेकिस्तान की दो दिन की राजकीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कल ताशकंद में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ बातचीत की। दोनों नेता भारत उज्बेकिस्तान संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमत हुए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अमेरिका की बहुराष्ट्रीय कंपनी 3M से भारत में अनुसंधान और विकास, उन्नत विनिर्माण और स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला में निवेश बढ़ाने का आह्वान किया है। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि वित्त मंत्री ने अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में आयोजित G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक से इतर 3M के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी

0: विलियम ब्राउन के साथ वार्ता की। चर्चा का मुख्य विषय भारत में 3M की भागीदारी को और मजबूत बनाना था। नेपाल में भीषण बाढ़ के बाद त्रिशूली 3A सहित कई पनबिजली परियोजनाओं की सुरंगों में फंसे सैकड़ों लोगों को निकालने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। एक रिपोर्ट।
1: भारत और चीन के विशेषज्ञों सहित बचाव दल सुरंग के अंदर फंसे लोगों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। बुधवार की इस आपदा में नेपाल में मृतकों की संख्या 794 हो गई है। तिब्बत में आधिकारिक तौर पर मृतकों की संख्या 16 है, जबकि 546 लोग लापता हैं। त्रिशूली नदी में फिर से बाढ़ के कारण मध्य नेपाल में एक झूलता हुआ पुल बह गया। पुल के बह जाने से गंडकी ग्रामीण नगर पालिका 7 और 8 के निवासियों का पृथ्वी राजमार्ग से संपर्क टूट गया है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT के संयुक्त दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगी। इस अवसर पर देशभर के 18 NIFT परिसरों से पास होने वाले विद्यार्थियों को डिग्रियां दी जाएंगी। भारतीय नौसेना ने आज मुंबई के नौसेना गोदी में निस्तार श्रेणी के दूसरे डाइविंग सपोर्ट पोत INS निपुण को बेड़े में शामिल किया। समारोह में नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने कहा कि INS निपुण नौसेना के पानी के नीचे चलाए जाने वाले विशेष अभियानों में महत्वपूर्ण साबित होगा। विशाखापट्टनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया INS निपुण गहरे समुद्र में चलाए जाने वाले गोताखोर और जटिल अभियानों के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है। मध्य प्रदेश में कक्षा 12वीं में 75% या इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप खरीदने के लिए 25,000 रूपये की सहायता राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव कल भोपाल में विद्यार्थियों के बैंक खातों में ये धनराशि अंतरित करेंगे। उज्जैन में आज भगवान महाकाल की 5वीं शोभा यात्रा निकाली जाएगी। ये श्रावण भाद्रपद के महीने में होने वाली शोभा यात्राओं का हिस्सा है। इस बार शोभा यात्रा का मुख्य आकर्षण 84 महादेव हैं। शोभा यात्रा शाम 4 बजे मंदिर से निकलेगी और रात लगभग 8 बजे महाकालेश्वर मंदिर में संपन्न होगी। शेयर बाजार आज दोपहर के सत्र में 0.5% की मामूली गिरावट के साथ काम कर रहे थे। निफ्टी 150 अंक गिरकर 24,026 पर पहुंच गया, वहीं सेंसेक्स 390 अंक गिरकर 76,875 पर पहुंच गया। अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में एक बड़े उलटफेर में सर्बिया के नोवाक जोकोविच पहले दौर में हार कर बाहर हो गए हैं। उन्हें अर्जेंटीना के मारियानो नावोन से हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी विविध भारती केंद्रम స్టూడియోలో సమయం 12:05. శ్రోతలందరికీ ఒక గమనిక. ఈరోజు ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్రం సాయంత్రం 7:15 ఇల్లు వాకిలి కార్యక్రమంలో పాలీహౌజ్లో మల్చింగ్ పద్ధతి అనే అంశం గురించి ఫల పరిశోధన స్థానం కాన్హా శాంతివనం నందిగామ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ హెడ్ ఆఫ్ ది డిపార్ట్మెంట్ డాక్టర్ పి తనూజ గారు రైతులు శ్రోతలు అడిగే ప్రశ్నలకు అప్పటికప్పుడు ప్రత్యక్ష ఫోన్ ఇన్ కార్యక్రమంలో సమాధానాలిస్తారు. మరి రైతులు శ్రోతలు ఫోన్ చేయవలసిన మా ఫోన్ నంబర్స్ 0402324052 0402324085 ఇవి మా ఫోన్ నంబర్స్. ఈ రోజు సాయంత్రం 7:15 ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్రంలో ఇల్లు వాకిలి కార్యక్రమంలో వింటారు. మీరు వింటున్నారు చైతన్య స్ఫూర్తి, నేను మీ రేడియో సఖి అనుపమ. మరి ఈ రోజు చైతన్య స్ఫూర్తిలో ఎవరి గురించి మాట్లాడుకోబోతున్నామో తెలుసా? మాతృత్వం ఒక కమ్మని కల. ప్రశాంతంగా బిడ్డని కని ఆనందంతో ముద్దాడే ఆ క్షణాలు, ఆ తొలి క్షణాలు అపురూపం. కాని వృత్తిధర్మం అలాంటి ముద్దు మురిపాలకు చోటివ్వకుండా పిలుస్తుంటే ఆ తల్లి ఏం చేస్తుంది? అర్థం కావట్లేదా? మాట్లాడుకుందాం ఒక ధీర వనిత గురించి, ఒక మాతృమూర్తి గురించి.

0: सखी सहेली
1: सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। चंचल जी आपको भी हमारा नमस्कार।
2: नमस्कार ममता जी आपको और सभी सुनने वालों को मेरा यानी चंचल वर्मा का नमस्कार। और एक लंबे अरसे के बाद मैं आज आपसे मिल रही हूँ यहाँ।
1: बिल्कुल, और मुलाकात तो होती ही रहती है ना, अब सखी सहेली के साथ माइक के साथ मुलाकातें बारी बारी से होती रहती है सखियों से। और एक मिलना होता है, मन का मिलना
2: जी,
1: वो बहुत जरूरी है। बस वो मिला, वो मुलाकात होती रहे ये काफी होता है। और जब मन मिलता है तो मुझे लगता है कि दो लोगों का मन मिलता है तो दोस्ती बहुत लंबे समय तक कायम रहती है।
2: बिल्कुल सही
1: दो
2: कहा।
1: लोगों का जब मन या दिल मिलता है तो दाम्पत्य जीवन सुखी रहता है। और जब दो दिल मिलते हैं तभी तो दाम्पत्य के सूत्र में बनते हैं ना।
2: और मिल तो जाते हैं, दाम्पत्य सूत्र में बन जाते हैं, लेकिन ये कहते हैं बहुत लंबी पारी तक उन्हें साथ जाना होता है। इस लंबी पारी तक साथ चलने के लिए बहुत सारे सामंजस्य बिठाने पड़ते हैं, कई बार समझौते भी करने पड़ते हैं, कई बार एक बहुत सारी बातों को कहते हैं कि समझ के लेना वाली बात जो होती है कि हमेशा होड़ नहीं करनी है, झगड़ा नहीं करना है, तू तू मैं नहीं करनी है, सिर्फ उन बातों को तालमेल कैसे बिठाए ताकि घर में एक सुख शांति का वातावरण बना रहे, सबके बीच में प्रेम बना रहे। तो सुखी दाम्पत्य जीवन अगर चाहिए तो उसके लिए हमारे जो सुनने वाले लोग हैं अगर वो बहुत लंबी पारी तक आ चुके हैं, यानी कि आज उनके विवाह जो वैवाहिक जीवन है उसको 35 बरस 25 बरस हो चुके हैं या 15 बरस हो चुके हैं, तो अब तक जीवन कैसे रहा और कैसे तालमेल बिठाया उन्होंने अपने साथी के साथ में।
1: और जब दोनों में से कोई एक नाराज हो जाता है, रूठ जाता है, तकरार होती है तो मेल कैसे होता, अपने अनुभव साझा करें हमारे श्रोता विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। और ये तो आज हम ये बातें इसलिए शुरुआत में ही करें कि सुखी दाम्पत्य जीवन आज का एक मुद्दा है, विषय है जिस पर हम चर्चा करेंगे। और हम उम्मीद करेंगे कि हमारे श्रोता भी इस चर्चा में शामिल हों।
2: और सोमवार के दिन हम जो प्रादेशिक व्यंजन है उनको लेते हैं और अगस्त के पूरे महीने में हमने लिए हैं पश्चिम बंगाल के जो अच्छे अच्छे व्यंजन होते हैं ना, चाहे वो तीखे चटपटे हों या मिठास लिए हुए हों, ऐसे व्यंजन हमने बताए हैं। तो आज ये आखिरी सोमवार है अगस्त के महीने का, तो बहुत सारे जो व्यंजन हम जिन्हें शामिल नहीं कर पाए हैं उनको आप जरूर बताइए उनके बारे में। और कुछ नाम हमने दिए हैं हमारे श्रोताओं को, उनके बारे में वो बताएं और उनकी रेसिपीज लिखकर साझा करें।
1: और कथा सुधा की बात भी करेंगे, कथा सुधा सुनवाएंगे। और आज एक खास दिन और है, एक ऐसी कवित्री लेखिका का जन्मदिन है जिन्हें जब हम याद करते हैं तो बस प्रेम का भाव, प्रतिरोध का भाव मन में पैदा होता है कि उनकी लेखनी में प्रेम भी था, प्रतिरोध भी था। और बड़ी बेबाक लेखिका मानी जाती है। रसीदी टिकट आप सबने पढ़ी होगी, और भी उनकी कृतियों की चर्चा करेंगे, लेकिन पहले जरा उनका लिखा ये गीत सुन लेते हैं।

0: कादम्बरी फिल्म का ये गाना था और ये इसलिए गाना खास तौर से सुनाया गया, अमृता प्रीतम की याद को ये गाना समर्पित था। और अमृता जी की के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम श्रोताओं को दे दें कि इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और इन्हें भारत के जो सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार, इससे भी सम्मानित किया जा चुका है। उन्हें अपनी पंजाबी कविता अज आंखा वारिस शाहनू के लिए बहुत प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी और इस कविता में भारत विभाजन के समय पंजाब में हुई जो घटनाएं हुई थी उन घटनाओं का बहुत ही दुखद वर्णन है। और इसके अलावा इनके उपन्यास है पांच बरस लंबी सड़क, पिंजर, अदालत, कोरे कागज, 49 दिन, सागर और सीपियां, और इनकी आत्मकथा रसीदी टिकट। मुझे लगता है हमारे श्रोताओं ने रसीदी टिकट तो जरूर पढ़ी होगी, कहानी संग्रह कहानियां जो कहानियां नहीं है कहानियों के आंगन में, और संस्मरण कच्चा आंगन, एक थिसारा और बहुत सारी अन्य कृतियां भी हैं इनकी। और जब भी हम अमृता प्रीतम को पढ़ते हैं तो खास तौर से महिलाएं उन्हें उनसे प्रेरणा भी पाती हैं क्योंकि उनकी उनकी जो लेखनी थी उसमें पंजाब की मिट्टी की सौंधी गंध थी, उसमें प्रेम की आवाज थी, विरह भी था, विद्रोह भी था, तो ये सब कुछ एक महिला को परिपक्व और परिपूर्ण बनाता है। तो अमृता जी की याद को आज नमन कर रहे हैं
1: और अब सुनते हैं कथा सुधा।

0: कथा सुधा भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
1: छह आने का टिकट, इस कहानी में पिछले हफ्ते आपने सुना।
2: आप ही किशोर जी हैं
3: जी।
2: आप तो मुझे जानते ही हैं, राम खेलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह, वही जिसने आपको छह कविताएं भेजी थी, जिस पर आपने लिखा था कि खो गई, और जिस पर मैंने 12 कविताएं भेजी तो आपने लिखा था कि आंधी में उड़ गई।
3: अच्छा।
2: और फिर मैंने 18 कविताएं भेजी थी तो आपने लिखा था कि जिस कंपोजिटर को आपने कविताएं कंपोज करने को दी है उस पर इतना प्रभाव पड़ा कि वो साधु बन गया। कविताएं अपने साथ लेता गया। लिहाजा मैं खुद अपनी 24 कविताएं लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हूँ।
3: अच्छा, तो आप ही राम खेलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह हैं। हाँ हाँ हाँ हाँ, आपके दर्शनों से मैं कृतार्थ हो गया।
2: कल रात मैंने ये तय किया कि मुझे आपका संपर्क पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो रहा, क्योंकि दफ्तर में दिन भर आप व्यस्त रहते हैं और आपकी अमृतवाणी मैं नहीं सुन पाता। लिहाजा मेरा आपके घर में आपके साथ ही ठहरना उचित होगा।
3: जी?
2: जी जी जी, इसके साथ ही बाजार का भोजन मुझे रुचिकर नहीं होता, यहाँ घर का भोजन मिलेगा।
3: मेरी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि आदमी मैं मुरव्वत वाला हूं और आसानी से ना नहीं कह सकता हूं, लिहाजा अब श्री राम खेलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह मेरे निजी अतिथि बनकर मेरे घर पर जम गए। रोज सुबह वो मेरे साथ चाय पीते थे, भोजन करते थे, दफ्तर जाते थे। उनका ट्राम का किराया मुझे ही देना पड़ता था क्योंकि कंडक्टर के पास आते ही वे मेरा मुंह देखने लगते थे। इतवार के दिन सुबह मेरे साथ चाय पीते हुए श्री राम खिलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह ने मुझसे कहा,
2: किशोर जी
3: जी,
2: आज तो आपकी छुट्टी है।
3: हाँ,
2: तो ऐसा कीजिए ना, मुझे कलकत्ता घुमा दीजिए।
3: अरे राम खिलावन जी, मुझे दुख है कि मुझे आपकी सेवा करने से वंचित रहना पड़ेगा, क्योंकि मुझे आज कई लोगों से मिलने जाना है।
4: अरे भाई भीखू,
3: देखो बाबूजी को आज शहर घुमा लाओ, और 2 6-6 आने वाले टिकट ले लेना दिन भर के, और ये लो 1 रुपया, ठीक है?
2: नहीं नहीं, एक ही टिकट लाना, एक ही टिकट। मैं अकेले ही घूम लूंगा।
3: अच्छा ठीक है। उस दिन उन्होंने जो चाय पी तो मैं दंग रह गया। 4 टोस्ट और छटाक भर मक्खन के अलावा उन्होंने पूड़ियों के साथ 4 लंगड़ा आमों का नाश्ता भी किया। इसके बाद वे 6 आने वाला टिकट जेब में रख कर कलकत्ता घूमने के लिए निकल पड़े। चलते हुए उन्होंने मुझसे कहा था,
2: आप मेरे भोजन की प्रतीक्षा ना कीजिएगा, रात में लौटकर भोजन करूंगा।
3: जी ठीक है। दिन भर मैं कामकाज में व्यस्त रहा। रात को मैं करीब 11 बजे घर लौटा, लेकिन एक अजब सा सन्नाटा मुझे मालूम हुआ। नौकर चाकर सभी मौजूद थे, लेकिन न मुझे भक्तिपूर्वक प्रणाम करने वाला मेरा भक्त था, और न लगातार प्रश्नों की झड़ी लगाने वाला, अजीब अजीब शंकाएं उठाने वाला, और मेरी सूनी जिंदगी की सुख शांति हरने वाला मेरा अतिथि था। यानी श्री राम खिलावन शरण जी अभी तक लौटे नहीं थे। नौकर मेरा खाना ले आया, लेकिन यकीन दिलाता हूं मुझसे खाना न खाया गया। मैं न जाने क्यों अपने अतिथि के लिए चिंतित हो उठा।

0: राम खेलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह के साथ क्या हुआ? वो रात को घर क्यों नहीं लौटे? क्या संपादक किशोर जी उन्हें सकुशल घर वापस लाने में सफल होते हैं? जानने के लिए सुनिए छह आने का टिकट, इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग।
1: कलकत्ता बहुत अच्छा नगर नहीं है और श्री राम खेलावन अपने जीवन का जहाज लेकर अकेले ही इस कलकत्ता नामक महासागर में निकल पड़े थे। मुझे चिंता हो रही थी कि कहीं बस के नीचे तो नहीं आ गए, या रास्ता तो नहीं भूल गए, या उन्हें कोई भगा तो नहीं ले गया। मुझे अच्छी नींद भी नहीं आई। बिस्तर पर मैं करवटें बदलने लगा। मुझे आश्चर्य हो रहा था कि श्री राम खिलावन शरण के प्रति मुझमें इतनी अधिक ममता कैसे आ गई। एकाएक मैं चौंक उठा, टेलीफोन की घंटी बज रही थी। मैं उठा, घड़ी पर मेरी नजर गई और उस समय 3 बजे थे। धड़कते दिल के साथ कांपते हुए हाथों से मैंने रिसीवर उठाया। हेलो,
2: भवानीपुर थाने से बोल रहा हूं। आपके यहां कोई राम खेलावन शरण प्रसाद तो नहीं ठहरे?
1: जी, खैरियत तो है? जिंदा है ना?
2: जी हाँ, है तो खैरियत से, लेकिन पिए हुए हैं। आध घंटा हुआ लाए गए हैं, आप उन्हें ले जाइए।
1: जी जी जी, रिसीवर मैंने रख दिया। अच्छा, तो हमारे श्री राम खेलावन शरण प्रसाद सिंह इतने पहुंचे हुए आदमी है भाई, मान गए। विश्वास नहीं होता कि ऐसे भी होते हैं। ऐसा लग रहा है जमीन फट जाए और हम उसमें समा जाएं। अब ये राम खेलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह जैसे आदमी इतना पी सकते हैं कि थाने में बांध दिए जाए, तो हम जैसे न पीने वालों के तो जीवन का कोई अर्थ ही नहीं। बहरहाल, अपने अतिथि को हवालात से लाना ही था और मैं हवालात पहुंचा। पूरे 5 रुपए देकर राम खिलावन शरण को मैंने छुड़ाया और उन्हें घर ले आया। घर आते ही श्री राम खिलावन शरण ने खींच कर एक गिलास पानी पिया और फिर मत्था पकड़कर बैठ गए। अब देखिए कि उनकी आंखों से टप टप आंसू गिर रहे हैं और वे मौन बैठे हैं, न हिलते हैं, न डोलते हैं, न बोलते हैं, न चालते हैं। आखिर मुझे ही पूछना पड़ा, राम खेलावन शरण जी, भला आपको ये क्या सूझी कि आप पीकर रास्ते में निकले?
3: मैं शपथ से कहता हूं कि मैंने मदिरा पान का जघन्य पाप नहीं किया है।
1: क्या?
3: बदमाश पुलिस वाले ने मुझे जबरदस्ती बंद कर दिया।
1: अच्छा, वो क्यों भला?
3: अरे, ये मेरा दुर्भाग्य है, मुझ में अब जान नहीं है, इतना थका हुआ हूं, आज छह आने के टिकट ने मुझे मार डाला।
1: ये कैसे भला?
3: देखिए किशोर जी, आपने मुझे छह आने का टिकट दे ही दिया था।
1: हाँ?
3: जब मैं कलकत्ता घूमने निकला तो मैंने 2 आने पैसे और साथ में ले लिए कि वक्त जरूरत काम आएंगे। अब मैं रवाना हुआ, ट्राम पर बैठ जाता था, जहां तक जाती थी वहां तक जाता था, और उसी ट्राम पर धर्मतल्ला वापस आता था। टालीगंज गया, बालीगंज गया, बहला गया, खिदरपुर गया, पार्क सर्कल।

0: मैंने हिसाब लगाया, 6 आने के टिकट में मैं 1 रुपया 12 आने का घूम चुका था, और अब घर आने में 2 आने का और सफर करता तो इस प्रकार 1 रुपये 14 आने घूम चुकता, और 6 आने में अपने हिसाब से मुझे 1.5 रुपया घूमना चाहिए था, और इसलिए मुझे संतोष करके उस समय लौट आना चाहिए था। लेकिन मालूम होता है कि उस समय मुझ पर शैतान सवार था, क्योंकि एक ख्याल आया कि खर्च 6 आने नहीं बल्कि 8 आने हुए, क्योंकि 2 आने का नाश्ता तो घूमने के सिलसिले में ही मैंने किया था, और 8 आने के हिसाब से मुझे 2 रुपए का घूमना चाहिए था। इधर ये ख्याल आया और उधर मुझे एक ट्राम दिखाई दी। जिस पर बेलगछिया लिखा था। मुझे ख्याल आया कि बेलगछिया अभी तक नहीं गया। मैं उस ट्राम में बैठ गया। बेलगछिया पहुंचकर मैं इस आशा से ट्राम में बैठा रहा कि ये वापस जाएगी, लेकिन एक आदमी ने आकर मुझसे कहा।
1: अब आप जाइए।
0: मैंने कहा मैं धर्मतल्ला जाऊंगा।
1: 11 बज गए हैं, घड़ी देख रहे हैं आप? अब यहां से कोई ट्राम नहीं जाएगी।
0: किशोर जी, मैं चौंक उठा। मैंने कहा कि क्या क्या क्या आप कोई ट्राम नहीं जाएगी हैं? नहीं जाएगी यहां से।
1: कह तो दिया नहीं जाएगी, अभी बस मिल जाएगी, चले जाओ।
0: मैं उठा वहां से, लेकिन मेरी जेब में एक पैसा नहीं। मतलब बस पर कैसे आता? मैंने उस आदमी से पूछा, धर्मतल्ला यहां से कितनी दूर है?
1: होगा कोई 5 मील।
2: तो फिर आपने क्या किया?
0: किशोर जी, मैं पैदल धर्मतल्ले की तरफ रवाना हुआ। करीब 12:30 बजे मैं धर्मतल्ला पहुंचा। पूरी तरह थका हुआ था। धर्मतल्ला में कोई ट्रॉम नहीं मिली, इसलिए मुझे वहां से भी पैदल ही रगड़ना पड़ा। डेढ़ बजे के करीब मैं उस बड़े चौराहे पर पहुंचा। किशोर जी, आप जरा देखिए ना, 9 मील पैदल चलकर आया था। दिन भर खाना भी नहीं खाया था, प्यास जोरों से लगी थी, पैर लड़खड़ा रहे थे, आंखें निकल पड़ती थी, और उसी समय एक पुलिस वाले ने बढ़कर मुझसे पूछा कि तुम कौन हो? मैं ऐसा बेकाबू और बेहोश था कि मेरे मुंह से शायद शब्द ही नहीं निकले, और अगर निकले भी होंगे तो टूटे फूटे, बिना मतलब के रहे होंगे। तब तक एक दूसरा पुलिस वाला आ गया। उसने पहले से पूछा कि मामला क्या है। दूसरे ने जवाब दिया कि मालूम होता है सर, दारू पिए हैं, पैर सीधा नहीं पड़ते, जबान नहीं खुलते है, नशा में बेहोश है। तो दूसरे ने कहा कि तो फिर थाने ले चलो, कल सुबह होश आ ही जाए। उस समय मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन या तो मैं उन्हें नहीं समझा सका, या फिर वो मुझे नहीं समझ सके।
2: ओहो, ये बात है भिखू। अरे खाना ले आओ थाली में। भाई राम खिलावन जी, आपका अनुभव तो बहुत बुरा हुआ है। अब मेरी सलाह ये है कि आप कल सुबह अपने घर वापस चले जाएं। आप अच्छी साइत पर घर से नहीं चले थे।
0: जी हाँ किशोर जी, बात तो ठीक है, लेकिन लेकिन मेरे मामा के ससुर के बहनोई जो टिकट कलेक्टर हैं और मुझे कलकत्ता मुफ्त में लाए थे, कह
2: अच्छा,
0: गए थे कि करीब 15 दिन में वापस लौटेंगे, तब साथ ले जाएंगे। 12 दिन तो हो गए हैं, 2-3 दिन में आने वाले हैं, चला जाऊंगा।
2: लेकिन इस घटना को हुए करीब 15 दिन हो गए हैं और मेरा घर अभी तक आबाद है, क्योंकि श्री राम खिलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह के मामा के ससुर के बहनोई अभी तक वापस नहीं लौटे हैं।
3: छह आने का टिकट। अभी आप सुन रहे थे भगवती चरण वर्मा।

की लिखी ये कहानी। आज आप सुन रहे थे इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग। इसमें भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है। राम खेलावन के रूप में जी श्याम, किशोर जी यानी सूत्रधार, जयंत पात्रीकर, पुलिस कर्मी यूनुस खान, ट्राम का कर्मचारी दीपक केसावलेकर। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। परिकल्पना और निर्देशन रेणु चतुर्वेदी।

0: विविध
1: अंतराल
0: भारती
1: के बाद.
0: से. अरे हम दोनों एक साथ बोल रहे
1: जी
0: हैं. तो बस यही बताना है कि ये कार्यक्रम है सखी सहेली, जो आज पहली बार जिन्होंने ट्यून किया होगा उनके लिए जरूरी है बताना कि सखी सहेली कार्यक्रम. और अब हम अपने एक मुद्दे पर बात करने चल रहे हैं जो एक बहुत ही जरूरी मुद्दा है, वो है शादी, दाम्पत्य.
1: जी
0: शादी दरअसल अपने साथ बहुत सारी चुनौतियां लेकर आती हैं.
1: जी
0: जीवन में यदि खुशियां हैं तो गम भी जिंदगी का हिस्सा है. ऐसे में जरूरी है कि हम इनमें संतुलन बनाकर चलें. लेकिन संतुलन बनाए कैसे? पति और पत्नी दरअसल होते एक सिक्के के दो पहलू हैं.
1: जी ममता जी
0: दोनों में से किसी एक को कभी भी किसी मोड़ पर एक दूसरे की जरूरत पड़ सकती है. ऐसे में ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि हम इसे अपनी परेशानी नहीं समझे, बल्कि अपना कर्तव्य समझे और एक दूसरे के मन को समझे.
1: बिल्कुल. और ये जो रिश्ता है बहुत समझदारी से काम लेने का होता है, प्यार और विश्वास पर ये टिका होता है जो रिश्ता है पति पत्नी का. कभी भी इस इमारत को बनाते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि उसकी जो नींव है वो बहुत मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि नींव ही अगर मजबूत नहीं हुई तो जो इमारत है उसका गिरने का खतरा हमेशा ही बना रहेगा. बिल्कुल इसी तरह से जब पति पत्नी के रिश्ते की इमारत है, इसके दो आधार स्तंभ होते हैं, प्यार और विश्वास. ये स्तंभ अगर कमजोर हो जाएंगे तो रिश्ता ज्यादा समय टिक ही नहीं पाएगा. और जो भी पति पत्नी है जिनके बीच ये दो बातें बहुत मजबूत हैं, इनकी प्यार भी है और विश्वास भी है, उनका दाम्पत्य जीवन मान के चलिए कि हमेशा सुखमय रहता है. लेकिन फिर भी कहते हैं कि थोड़ी सी जो खट्टी मीठी बातें हैं वो तो जीवन का हिस्सा है, चलनी भी चाहिए.
0: बिल्कुल. देखिए ना, इसी तरह की कुछ बात हमारी एक सखी हैं जिन्होंने लिखी है. लिखा इन्होंने कि कहते हैं कि जो धनुष बहुत मुश्किल से मुड़ते हैं वो चटक कर टूट जाते हैं. दाम्पत्य जीवन में भी यही बात लागू होती है. दाम्पत्य जीवन एक प्रतिध्वनि की तरह है, जो देंगे वही आपके पास वापस आएगा. अगर एक दूसरे की खूबी को आप सराहते हैं तो कमियों को भी नजरअंदाज करना सीखिए. एक दूसरे की असहमति को समझे और ध्यान दें कि कहीं आप कंट्रोल फ्रीक तो नहीं होते जा रहे. एक दूसरे की कमियों और खूबियों को ही उसकी विशेषता समझें और हर कदम पर अपने जीवन साथी को बदलने की कोशिश हरगिज ना करें, वरना जीवन में सिवाय कलह के और कुछ नहीं मिलेगा. कुछ तुम समझो कुछ हम समझे, ये वाला सूत्र अपनाएं और दाम्पत्य की गाड़ी को दोनों पहियों पर चलने दें.
1: और ये जो इन्होंने लिखा है ना कि बदलने की कोशिश ना करें, जब आप किसी से अगाध प्रेम करते हैं तो आप उसको उसकी हर अच्छाई बुराई, उसकी कमियां खूबियों सबके साथ उसे अपनाते हैं. और ये बहुत ज़रूरी है. कहीं आपको सिर्फ खूबियां देखकर किसी से प्रेम हुआ और बाद में कमियों के देखते अगर झगड़े में चीज़ें बदल जाती हैं तो ये सुखी दाम्पत्य जीवन की निशानी रही है. क्योंकि जहां खूबियां होती हैं वहीं कमियां सब में होती हैं. और एक चीज़ और है ममता जी, कि जो चीज़ आपको कमी लगती है वो किसी अन्य को खूबी लग सकती है, और जो आपको खूबी लगे वो किसी अन्य को कमी लग सकती है. ये सबका देखने का समझने का अपना नजरिया होता है.
0: और दिन भर आरोप प्रत्यारोप भी दाम्पत्य जीवन को कमजोर बनाता है.
1: बिल्कुल सही कहा आपने.
0: तो दोनों की जहां समझदारी होती है वहां लंबे समय तक दाम्पत्य टिकता है. जबकि कोई बहुत बड़ी समस्या ना हो, बड़ी घटना ना हो. हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि 6 आने का टिकट भाग दो का इंतजार है. देख, इन्होंने सुन लिया. और ये जो विषय है सुखी दाम्पत्य जीवन, मेरे कोमल दिल पर मरहम है और प्रहार भी. बहुत ही नाजुक विषय है, चर्चा का इंतजार है, सहन शक्ति की परीक्षा है. जब विवाहित जीवन 30 साल पूरा होता है तो साथ रहना भी है, एक दूसरे का के साथ दुश्मनी भी है, तो फिर भी कट ही जाएगी. ऐसा इन्होंने लिखा है. दरअसल इन्होंने स्पष्ट नहीं लिखा है, शायद हो सकता है कि छोटी सी दरार पड़ जाती है दाम्पत्य जीवन में तो लोग उसको बहुत बड़ा भी बना लेते हैं कई बार.
1: हाँ.
0: और कई बार उस दरार को पाटने की कोशिश नहीं करती है तो टूटने की नौबत आ जाती है. तो कोशिश हो कि वो दरार पाट लिया जाए.
1: और हमारे श्रोता ने लिखा ना कि कई बार मुश्किल वक्त में साथ देना होता है, तो बहुत सारी मुश्किलों का समय आता है जब पति पत्नी की भी एक बहुत कठिन परीक्षा होती है. अभी मान लीजिए आपके जो पतिदेव हैं, यानी किसी स्त्री के पति हैं, उनकी नौकरी छूट गई या बिजनेस में कोई बहुत बड़ा घाटा हो सकता है, और ये ऐसे समय में ना एक जीवन साथी की आवश्यकता सबसे ज्यादा होती है. हो सकता है कि अगर कोई महिला है वो कोई बिजनेस वुमेन है, यानी कि वो नौकरी करती हैं या कोई व्यापार करती हैं, और उनके व्यापार में घाटा हो गया, तो चाहे वो पति हैं या पत्नी हैं, कामकाज जब मंदा होता है या छूट जाता है तो घर में आर्थिक समस्याएं आती हैं और बहुत सारी चीजें उथल पुथल होने लगती हैं. ऐसे में परिवार में लोगों का तनावग्रस्त होना जरूरी है, तो अगर आपके पति तनावग्रस्त हैं ऐसी चीजों को लेकर या पत्नी तनावग्रस्त हैं, तो दोनों एक दूसरे का साथ दें और प्रेमपूर्ण व्यवहार करेंगे तो वो इस परिस्थिति से बहुत जल्दी बाहर निकल आते हैं। और ऐसे में यदि अगर ताने देंगे कि भाई तुम्हारी वजह से ही ये नुकसान हुआ, तुमने ऐसे ठीक से नहीं किया, तो ये चीजें है ना घर में चीजों को और क्लेश बना देती हैं।
0: मोरल सपोर्ट बहुत जरूरी है कि आप एक दूसरे की बात को समझें, और जहां कोई एक परेशान है तो साथी को चाहिए कि वो आपकी उस परेशानी को दूर तो नहीं कर सकता है कोई एकदम से, लेकिन उस परेशानी में ये जताना बहुत जरूरी है कि हम तुम्हारे साथ हैं, चाहे वो ये नौबत जो आपने ऑफिस की बात कही, चाहे वो हो, चाहे एक दूसरे में से कोई जोड़ा बीमार पड़ जाता है तब की समस्या है, या फिर कई कोई ऐसा हादसा हो जाता है जिसका शिकार हो जाता है, तब तो निश्चित रूप से दोनों में से एक की जरूरत पड़ती है। बात जरूरत की नहीं है, जरूरत तो आप और भी तरीके से पूरी कर सकते हैं, लेकिन जरूरत यहाँ पर बात यह है कि आप जिससे प्रेम करते हैं दाम्पत्य जीवन में निश्चित रूप से प्रेम की नींव होती है, मतलब प्रेम की बुनियाद पर ही टिका होता है, उस प्रेम को टूटने से कैसे बचाएं।
1: और जैसे आपने कहा ना कि चिंता ना करते हुए अगर कोई भी एक शख्स ये कह देता है कि आप चिंता मत करो मैं हूं ना आपके साथ,
0: बिल्कुल,
1: तो ये जो शब्द हैं बहुत कहते हैं कि मजबूत बना देते हैं।
0: अब एक गाना सुनते हैं।

0: तो ये गाना सखियां और सखा सुन रहे थे और हमारी बहुत सारे श्रोताओं ने इस विषय पर लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है कि पति पत्नी के आपसी विश्वास और साथ से दाम्पत्य जीवन भी सुखी और बच्चे भी सुखी होते हैं। बात यहाँ बच्चे की है तो ये बात बताना बहुत जरूरी है। कई बार दाम्पत्य जीवन को स्थायी रखने के लिए, टिकाऊ रखने के
1: हाँ
0: लिए
1: हाँ
0: बच्चे बच्चे की भूमिका बहुत अहम होती है।
1: हाँ
0: कई बार बच्चे पति पत्नी के झगड़ों में आकर अच्छी बड़ी भूमिका निभाते हैं और झगड़े को खत्म भी करवा देते हैं।
1: बिल्कुल
0: और
1: सही
0: कई
1: कहा।
0: बार ये माता पिता भी बच्चे के लिए अपने झगड़े खत्म कर देते हैं।
1: बहुत सही कहा आपने। और कई बार ऐसा भी होता है ना, जब मुश्किल का समय आता है, जैसे हम एक बात कर रहे थे, हमने एक सिर्फ कारोबार या नौकरी की बात की, ऐसे समय में पत्नियां एक तरीके से इस चीज को टूल की तरह इस्तेमाल करती है, भाई अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं मायके चली जाऊंगी। यानी कि बात बात पर आपको अपने, चाहे वो कोई छोटी सी नोकझोंक वाली बात है या कोई बड़ी समस्या आपके साथ में हुई है
0: चंचल
1: दाम्पत्य
0: जी,
1: जीवन
0: यहाँ पर
1: में
0: अब उल्टा भी होने लगा है। हमने तो सुना है कि अब महिलाएं ये कहती हैं कि मैं मायके नहीं जाऊंगी, मैं तुमको घर से निकाल
1: अच्छा तो भाई
0: दूंगी।
1: दोनों ही परिस्थितियां जो है वो ठीक नहीं है। ना तो पति को घर से बाहर निकालने वाली परिस्थिति ठीक है, ना ही मायके जाने वाली है। जो भी कोई समस्या आपके जीवन में आई है, जो दाम्पत्य जीवन के साथ में उलझनों को बढ़ा रही है, तो उसे सुलझाने का प्रयास करना है और दोनों को मिलजुल कर ही करना है। अगर किसी तरह से हमें पता लगता है कि जीवन साथी के साथ कोई स्वास्थ्य समस्या भी है, किसी रोग से वो ग्रसित हैं, तो ऐसे समय में भी धैर्य से काम लेना है। अगर वो किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, चाहे वो पति हैं या पत्नी, तो उनका सहयोग अगर मिलेगा, आप ध्यान देंगे, तो वो जो भी आपका रोग है या आपकी समस्या है, उससे जल्दी स्वस्थ होकर, सुरक्षित होकर, उबर कर बाहर आ सकते हैं।
0: बिल्कुल सही बात है। और देखिए, कुछ मिलती जुलती बातें हमारे श्रोताओं की ओर से भी आ रही हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि सुखी दाम्पत्य जीवन की कुंजी खुशी है, जो पारस्परिक सम्मान, अटूट विश्वास और खुले मन से संवाद रूपी की चेन में बंधी हुई है। अध्यात्म और ज्योतिष दृष्टि से सुखी वैवाहिक जीवन के लिए शिव पार्वती को ध्यान में रखना चाहिए और इस मतलब आध्यात्मिक की ओर ले जाने की बात इन्होंने कही है।
1: जी
0: दरअसल आज जो भागदौड़ की जिंदगी है, ऐसे में आपको सबसे बड़ी कुंजी तो यही है कि आप एक दूसरे की बात को सुने और समझें, तो काफी कुछ मुश्किलें हल हो जाती हैं।
1: एक बड़ा छोटा सा बात छोटी सी कही है श्रोता ने, लेकिन अहम बात है। उन्होंने लिखा है कि सुखी दाम्पत्य जीवन कोई बना बनाया नियम नहीं, ये दोनों की भागीदारी की निरंतर प्रयासों और आपसी समझ के बिना किसी शर्त के बिना एक दूसरे को स्वीकार करने की भावना से ही ये रिश्ता फलता और फूलता है।
0: चंचल जी, दरअसल ये बड़ी बहुत ही क्या कहते हैं, बहुत ही नाजुक डोर होती है
1: जी
0: दाम्पत्य की, और इस नाजुक डोर को टूटने से बचाना ही सही होता है। हालांकि अब दौर बदल चुका है, जब हम सभी इस बात पर चर्चा करते हैं और स्त्री विमर्श की जब बात आती है, तो यही होता है कि आपकी जब आपका मन एक दूसरे से नहीं मिल रहा है, तो आप एक दूसरे के साथ को छोड़ दें। लेकिन बहुत मुश्किल होता है छोड़ना भी।
1: जी
0: जोड़ना जितना आसान होता है, छोड़ना उतना ही कठिन होता है। तो जब आप घर में बहुत ज्यादा हिंसा हो रही है और बहुत ज्यादा रोज रोज की मारपीट, लड़ाई झगड़े जब एकदम
1: जी
0: अति हो जाती है, तो निश्चित रूप से छोड़ना ही बेहतर होता है। लेकिन उसके लिए लड़कियों की बचपन से जो कंडीशनिंग होती है, लड़कियों की जो पढ़ाई लिखाई से लेकर उनकी जो परवरिश होती है, उनको शुरू से ट्रेंड करना बहुत जरूरी है। अब पिछला समय जो बीत गया सो बीत गया, लेकिन अब लड़कियों को भी लड़कों के बराबर ही सम्मान देना चाहिए और शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाना चाहिए। अमूमन हमने देखा है कि घरों में लड़कियां कभी पिता के सहारे, कभी भाइयों के सहारे, फिर कभी दोस्तों मित्रों के सहारे ही अपना जीवन जीती हैं। तो
1: जी
0: जब पति पत्नी के बीच ऐसी नौबत आती है, तो वो औरत ये सोचती है कि अब हम कहाँ जाएं, अब हम क्या करेंगे, किसके सहारे जिएंगे। तो ये जो सहारे वाली बात मन में आती है, इससे बाहर निकलना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब जो दौर बदल चुका है।
1: और कई बार जब त्रिकोण वाली परिस्थिति आती है ना, अगर आपका कोई साथी है, कोई मित्र है, पति की कोई अगर महिला मित्र है या पत्नी की कोई पुरुष मित्र है, तो उनको लेकर भी कई बार संदेह मन में इस तरह के आते हैं कि दाम्पत्य जीवन टूटने की कगार पे आ जाता है। और कई बार आजकल मोबाइल जो चीज है, हम एक दूसरे की अंदर झांकने के लिए उस मोबाइल को देखने की कोशिश करते हैं। अगर वहां कोई पासवर्ड है, वो हमें ना मिले, तो शक कहते ना पक्का हो जाता है, गहरा हो जाता है कि भाई पासवर्ड क्यों लगाया है आपने अपने मोबाइल पर, ऐसा क्या है जो हम नहीं देख सकते। तो ये चीजें भी कई बार परिस्थितियों को बहुत उलझा देती हैं, तो चीजों को समझ के लेने वाली बात है।
0: और पासवर्ड तो अमूमन महिलाओं को, मतलब महिलाओं का पासवर्ड पुरुष ही तय करते हैं, तो ये तो शायद भेद अब तक नहीं मिट पाया है। और ऐसी तमाम छोटी छोटी बातें हैं जो जिसे हम अनदेखा करके दाम्पत्य जीवन को संभाला जा सकता है। अक्सर ये देखा जाता है कि जब एक साथी की नाइट शिफ्ट होती है और दूसरा घर में है, मान लीजिए पति की नाइट शिफ्ट है और पत्नी घर में रहती है और घर की पूरी देखरेख कर रही है, उसके कंधे पर पूरी घर की जिम्मेदारी है, तो यहाँ भी टसल होने के चांस होते हैं, क्योंकि उसको नींद की जरूरत होती है पति को और वो घर उतना मैनेज नहीं कर पाता है, तो भी मुश्किलें होती हैं। तो ये जो रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं जिसके कारण टकराव होते हैं।
1: कुल मिला के कहना यही है कि हर समय, चाहे वो कठिन समय है चाहे आपके प्यार के पल हैं, एक दूसरे का हाथ हमेशा थामे रहें और अपनी जिंदगी की मुश्किल भरे दौर में भी एक दूसरे का साथ ना छोड़ें। जब आप खुशी एक साथ साझा करते हैं तो दुख को भी एक साथ साझा करें।
0: साथ छोड़ने की जब बात आती है तो बहुत जरूरी है कि स्वावलंबी होना महिलाओं का। महिलाएं अगर आत्मनिर्भर हैं और उनकी भी आजीविका है साथ में, तो जब ऐसी नौबत आती है तो उनके ऊपर दुख का पहाड़ नहीं टूटता है। इसलिए बचपन से लड़की और लड़के को बराबर रखना चाहिए। और बात जब दाम्पत्य जीवन को संभालने की आती है तो यही हम सभी यही कहते हैं कि तोड़ने से बेहतर होता है जोड़ना। तो जितना हो सके जोड़िए एक दूसरे को। फिलहाल सुनिए ये गाना।

0: देखो ना, तेरे मेरे मिलन की ये रहना, अभिमान फिल्म, ये भी तो
1: जी
0: दाम्पत्य जीवन पर ही
1: आगे
0: आधारित है,
1: किस तरह
0: जहाँ
1: से थोड़े से अहम को लेकर दाम्पत्य जीवन टूट जाता है।
0: तो अहम का टकराव नहीं होना चाहिए। हमारे एक श्रोता ने लिखा भी है, सुखी दाम्पत्य जीवन भई दाम्पत्य जीवन सुखमय ही नहीं अपितु तो आनंद युक्त होना चाहिए, लेकिन सब कुछ रहते हुए भी लोगों के पास आनंद नहीं है, बहुतेरे अपने उस बेगाने प्यार की तलाश और मोबाइल में कर रहे हैं, तो क्या किया जाए।
1: जी बिल्कुल सही बात है। तो चलिए अब कुछ खट्टे मीठे चटपटे जिस तरह के भी व्यंजन हैं इनकी बात हो जाए। और आज हम बात कर रहे हैं जिन व्यंजनों की, उसमें से एक है शुक्तो। ये एक पारंपरिक बंगाली मिश्रित सब्जी होती है जिसका स्वाद हल्का कड़वा और मलाईदार होता है। मुख्य सामग्री इसमें होती है करेला, कच्चा केला, बैंगन, सहजन की फलियां यानी कि ड्रमस्टिक्स, और राधुनी मसाला और दूध। इसे बंगाली दोपहर के भोजन की शुरुआत के समय मेन कोर्स के रूप में परोसा जाता है।
0: और एक व्यंजन इस तरह से बना है, सोनार मूंग दाल। ये भुनी हुई मूंग दाल से बनने वाला खास और शाही व्यंजन कहलाता है। इसमें दाल को पहले सूखा भून दिया जाता है, जिससे इसमें एक बेहतरीन सोंधी खुशबू आती है। मुख्य सामग्री है सोना मूंग दाल, छोटे दाने वाली खास तरह की दाल, घी, काजू, किशमिश और हरी मिर्च। इसे बंगाली शादियों, त्योहारों और विशेष पूजा के अवसरों पर चावल के साथ परोसा जाता है।
1: इसी तरह से एक और रेसिपी हमारे पास आई है, ये मोचार घंटो। और ये बिहारी रसोई में भी बनाया जाता है बंगाली रसोई के साथ साथ। और जिनके भी घर में केले का पेड़ लगा हो, वहाँ केले का गोंद गिरता है, उससे फूल बनता है। और ये इन्होंने रेसिपी बताई है कि उस फूल को निकाल कर ये सब्जी बनाई जाती है। थोड़ी सी मेहनत इसमें ज़्यादा लगती है, लेकिन उसके भीतर पुंग केसर को निकालना पड़ता है और थोड़ा सा एक कसैला भी लगता है। इसे उबाल कर बेसिक मसालों के साथ और बिना प्याज लहसुन के बहुत स्वादिष्ट सब्जी बन जाती है। उबालने के बाद पिसे हुए चने या मसूर दाल में मिलाकर इसकी पकौड़ियों की तरह बनाकर इसके कोफ्ते भी बनाए जाते हैं।
0: पातिशाप्ता जानती हैं आप क्या होता है? नहीं जानती है?
1: जी
0: चलिए हम बता
1: बताइए।
0: रहे हैं। तो हमारी श्रोता ने ये लिख भेजा है, पातिशाप्ता ये एक तरह की पारंपरिक बंगाली मिठाई है और जो पतले चीले की तरह दिखती है। ये बेहद मीठी और मलाईदार होती है। मुख्य सामग्री इसमें लगती है मैदा, सूजी और चावल के आटे का घोल, जिसमें खोया कद्दूकस किया हुआ, मतलब मावा कद्दूकस करके नारियल और खजूर का गुड़ भरा जाता है, और इसे विशेष रूप से पौष संक्रांति के त्योहार पर सर्दियों में बनाया जाता है।
1: इसी तरह से एचौरा डालना, ये कच्चे कटहल की एक गाढ़ी और मसालेदार तरी वाली सब्जी होती है। इसका स्वाद और बनावट काफी हद तक जो मांसाहारी व्यंजन होते हैं उनकी तरह, मतलब देखने में ही लगता है। और इसमें मुख्य सामग्री होती है कच्चा कटहल, आलू, टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट। बंगाली पंचफूरन के साथ और गर्म मसाले के साथ इसे परोसा जाता है और इसे शाही मटन भी कहते हैं।
0: और जब भी ये सब व्यंजन बनाएं आप, तो उस समय गाना जरूर सुने, वो भी विविध भारती से। फिलहाल ये गाना सुने।

0: अब जरा घड़ी की ओर देखिए, बिल्कुल भी समय नहीं है कि हम कुछ बोले बतियाएं या गाना सुनवाएं। तो लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह
1: और चंचल वर्मा का नमस्कार।
0: नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: श्रोताओ, प्रत्येक सोमवार सेहतनामा कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं सेहत से जुड़ी समस्याएं और उनके निदान पर विशेषज्ञों से बातचीत। बालों की सुंदरता और इसके लचीलेपन को लेकर हम बड़े सजग रहते हैं और हर तरह से इनकी सुंदरता के लिए प्रयास भी करते रहते हैं, फिर भी बालों को लेकर एक समय के बाद कुछ न कुछ समस्याएं देखने में आ ही जाती हैं। पिछले हफ्ते आज ही के दिन बालों की समस्या और देखभाल इस विषय को लेकर डॉक्टर रचिता धूरत से यूनुस खान की बातचीत हमने आपको सुनवाई थी। आज इसी बातचीत का दूसरा भाग आपको सुनवाते हैं।
1: अच्छा, मुझे ये बताइए कि कई पुरुषों में जो बालों की समस्या, वो दो तरह से होती हैं। एक तो ये कि बाल पीछे की तरफ सरकते चले जाते हैं और ये माथा जो है वो बड़ा होता चला जाता है। दूसरा, जिसको हम हिंदी में चांद निकलना कहते हैं, बेल्डनेस आती है बीच के हिस्से में। इन दोनों को रोका जा सकता है? इनका कोई उपाय है? या ये जेनेटिक है और ये खानदानी चीजें हैं तो इसको टाला नहीं जा सकता?
2: एक भ्रम है लोगों में।
1: अच्छा,
2: कि जेनेटिक है तो ट्रीटमेंट नहीं है। ये भ्रम। अगर मैं कहूं कि डायबिटीज भी जेनेटिक है तो ट्रीटमेंट मत लीजिए। हो सकता है?
1: नहीं हो सकता है, मुश्किल हो जाएगी।
2: तो जरूरी समझना है कि जेनेटिक बीमारियां जो होती है, साइंस ने इतना रिसर्च कर लिया कि उसमें ट्रीटमेंट लाई हुई है।
1: ओके।
2: और हमने ऐसे ट्रीटमेंट देखे हुए हैं कि जिसको रिस्पॉन्स काफी तरह से होता है। सिर्फ ट्रीटमेंट का तरीका अलग अलग है। स्टेज वन, स्टेज टू, अलग अलग स्टेजेस में हमको ट्रीटमेंट देने होती है। तो चांद निकला है, शायद मेडिकल लाइन इतनी इम्प्रूवमेंट नहीं हो, उससे फर्क नहीं गिरेगा, क्योंकि बहुत बड़ा चांद है।
1: बहुत बड़ा चांद है, सिर पर बहुत बड़ा चांद।
2: तो उसके लिए हेयर ट्रांसप्लांट है।
1: जी जी जी, ओके।
2: उसके लिए हेयर ट्रांसप्लांट है।
1: उसकी भी बात हम आगे चलकर करने वाले हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट जो है वो क्या है, उसकी बात आगे करते हैं। तो ये टाला जा सकता है, मतलब ये कि अगर कोई खानदानी मामला भी है, जेनेटिक मामला भी है, तो भी डॉक्टर के पास जाएं।
2: या क्योंकि ट्रीटमेंट है, रिसर्च ने ट्रीटमेंट निकाली है उस पर।
1: जी,
2: आपको लेना या नहीं लेना आपका डिसीजन है।
1: राइट, बिल्कुल। अच्छा, ये जो चारों तरफ बड़े सजीले विज्ञापन आते हैं जिसमें लहराते हुए बाल नजर आते हैं और ये शैम्पू लगाने से बाल चमकीले, और वो कमाल कमाल के वर्ड्स का इस्तेमाल है जो हम यहाँ नहीं दोहराना
2: तो
1: चाहिए।
2: विज्ञापन करते हैं। विज्ञापन का काम ही है कि आप देख के थक हो जाओ।
1: हाँ, कि ये रिचनेस आती है, फलाना, अलग अलग टेक्निकल चीजें बताई जाती हैं कि ये विटामिन से भरपूर है और ये दादी नानी के नुस्खों से भरपूर है। क्या कोई शैम्पू सचमुच में बालों का भला करता है, या बिना सोचे समझे शैम्पू का इस्तेमाल करने का मतलब है कि उल्टा असर हो जाएगा?
2: मैं उल्टा नहीं बता सकूंगी कि उल्टा असर होगा। शैम्पू बहुत माइल्ड तरीके से स्लोली काम करता है। इट्स अ सपोर्टिव। जैसे कुछ शैम्पू जो है कि हमारे स्काल का इकोसिस्टम होता है, हमारे स्काल पर कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारे स्काल को हेल्दी बनाते हैं और हेयर को हेल्दी बनाते हैं। जब गंजापन आता है तो इसका जो ये है सपोर्टिवनेस या इकोसिस्टम गड़बड़ हो जाती है। तो कुछ शैम्पू ये है, इंग्रेडिएंट्स जो शैम्पू में होते हैं, ये बालों के इकोसिस्टम को रेस्टोर करने का काम करते हैं स्लोली। पर कुछ शैम्पू ऐसे, अब कोई हार्श शैम्पू आजकल तो नहीं लगाता है। अच्छे वाले शैम्पू ही लगाते हैं, लेकिन वो शैम्पू में ये इकोसिस्टम को रेस्टोर करने की कैपेसिटी है या नहीं है आपको नहीं पता चलेगा।
1: जी जी,
2: आपको डॉक्टर ही बता सकेगा कि ये शैम्पू में ये सिस्टम है, आप ये लगाइए। नॉर्मल लोगों को देखना है कि आपका हार्श शैम्पू नहीं लगा। हार्श आप कैसे समझोगे? तो जब झाग ज्यादा होता है, हमारी मेंटेलिटी क्या है,
1: झाग ज्यादा है तो अच्छा है।
2: अच्छा है, पर वो ज्यादा झाग वाला शैम्पू आपका स्किन का, हेयर का मॉइस्चर निकाल लेता है पूरा।
1: ओहो, जो हर धारणा जो है लोकप्रिय धारणा, उसमें आज आप भयानक तोड़फोड़ कर रही हैं। जी, ये क्योंकि हमें तो लगा कि वाह वाह, का झाग वाला शैम्पू है।
2: एडवर्टाइज देखोगे तो झाग वाला शैम्पू से भरपूर ऐसे और लोगों को लगता है कि लेना चाहिए।
1: जी,
2: तो थोड़ा सावधान रहना चाहिए। जितना ज्यादा झाग उतना ज्यादा तुम्हारा मॉइस्चर
1: चले जाएगा। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। शैम्पू की फ्रीक्वेंसी क्या हो और उसका सही तरीका क्या है?
2: उसके लिए आपकी लाइफस्टाइल समझना जरूरी है. अगर आप रोज जिम जा रहे हो या पसीना आ रहा है तो आपको रोज करना चाहिए, पर करने के टाइम पर आपको ध्यान देना है कि वो शैम्पू माइल्ड तरीके का हो.
1: ये ऐसा झाग वाला नहीं हो.
2: झाग वाला नहीं चाहिए. अदरवाइज महिलाओं में 2 से 3 बार, पुरुषों में डेली या 3 से 4 बार. अभी जिसको स्केलिंग है, डैंड्रफ है, उसके लिए फ्रीक्वेंसी थोड़ी बढ़ानी पड़ती है, अलग टाइप का शैम्पू लेना होता है. और जब भी आप शैम्पू करें और आपके बाल ड्राई होते हैं तो पहले दिन या 1 घंटा पहले आपको ऑयल लगाना जरूरी है. कोकोनट ऑयल से क्या होता है, कोकोनट ऑयल का एक कैपेसिटी है जो हेयर के अंदर के सेल तक जाके रुकता है. तो इससे उसमें से का मॉइस्चर है ना, वो शैम्पू के टाइम पर नहीं निकलता जल्दी से.
1: ओके.
2: तो ड्राई नहीं होते हैं.
1: बहुत महत्वपूर्ण बात है.
2: और फिर भी आपको लगता है कि ड्राई हो रहे हैं तो कंडीशनर लगाना चाहिए. भले ही आप 2 मिनट के लगाओ, 5 मिनट के लगाओ, लेकिन कंडीशनर लगाइए. पहले वाला कंडीशनर मतलब तुम्हारा ऑयल जो कोकोनट ऑयल है, बाद में वाला कंडीशनर मतलब अभी मार्केट में अच्छे वाले कंडीशनर आते हैं. इसके बावजूद भी आपके बहुत ड्राई है, लस्टरलेस है, तो आपको देखना चाहिए. उसको बोलते हैं हेयर शार्प डिसऑर्डर्स, मतलब आपकी शार्प की क्वालिटी कुछ खराब हो रही है. वो भी जेनेटिक होता है और नॉन जेनेटिक भी होता है.
1: ओके.
2: तो वो एक एनालिसिस करके लेना जरूरी होता है.
1: जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बोली है. यहाँ हम एक गाने के लिए रुकते हैं.

0: मजेदार ये है कि हम बातें बालों की कर रहे हैं डॉक्टर साहब, और गाने भी जो हैं वो बालों से जुड़े सुनवाते चले जा रहे हैं। आपने कहा कि शैम्पू की फ्रीक्वेंसी की सारी बातें हो गई कि किस तरह से शैम्पू और कंडीशनर का इस्तेमाल करना चाहिए। आपने बड़ी सूझबूझ के साथ नारियल के तेल का जिक्र किया। आज के लड़के या कुछ हद तक लड़कियां भी बालों में तेल लगाने से परहेज करते हैं क्योंकि रोज बाहर जाना है वो गंदा दिखेगा, बाल चिपचिपे दिखेंगे। ये तेल लगाना कितना जरूरी है?
1: तो मैं कहूंगी तेल लगा के बाहर नहीं जाइए, रात को तेल लगाइए, सुबह आपको शैम्पू करना है तो जो दिन शैम्पू करना है उसके पहले रात को तेल लगा लीजिए।
0: जी,
1: तेल लगाने का और एक फायदा होता है, ये रिसर्च बोलती है। और ये जब मैं सोचती हूँ कि हमारे टाइम पर हम लोग तेल लगा के ही शैम्पू करते थे बचपन में,
0: बिल्कुल
1: एक क्या बोलते हैं, माहौल रहता था, रूल था कि मम्मी आती थी अच्छे से तेल चंपी करती थी और दूसरे दिन हम शैम्पू करते थे। रिसर्च ने बताया है कि कुछ तेल ऐसे हैं जिसकी इकोसिस्टम मेंटेन होती है, जो मैंने बोला है इकोसिस्टम,
0: हाँ जी,
1: वो तेल से मेंटेन रहती है।
0: तो देखिए कि ये हमारी पुरानी
1: परंपरा
0: कितनी साइंटिफिक है।
1: साइंटिफिक, तभी साइंटिफिक नॉलेज नहीं था। तो अभी क्या हुआ कि पेरेंट्स वो टाइम के चले गए, अभी मॉडर्न पेरेंट्स आए हैं तो उनको ये साइंटिफिक नॉलेज नहीं है।
0: जी,
1: मैं तो कहती हूँ तेल लगाना जरूरी है,
0: बहुत जरूरी है
1: इकोसिस्टम के हिसाब से, अगर आपको बालों के इकोसिस्टम मेंटेन करने। इस सिंपल एक एग्जांपल देते हो, आप बालों को मॉइस्चराइजर, हाथों को मॉइस्चराइजर लगाते हो, क्यों लगाते हो?
0: रूखे हो जाते हैं।
1: स्काल्प को हम मॉइस्चराइजर क्यों नहीं लगाते? क्योंकि सीबम रहता है अपने बालों में, एक सीबम जो बालों में बहुत ज्यादा रहता है, सीबेसिस ग्लैंड बहुत रहते हैं, तो मॉइस्चर की जरूरत नहीं पड़ती इसलिए। लेकिन ओवर पीरियड जब हम धूप में जाते हैं, हमारी जब उम्र होती है तो इसका प्रमाण भी सीबम सिक्रीशन का कम हो जाता है। तो हम रोज नहीं लगा रहे ऑयल, पर बॉडी में हम रोज लगाते हैं स्नान करने के बाद, ड्राई होते हैं, तो कभी कभी सर के बालों को, स्किन को तेल लगाना जरूरी है।
0: ये फ्रीक्वेंसी क्या हो, इसका भी कन्फ्यूजन दूर होना चाहिए।
1: हफ्ते में 2 से 3 बार।
0: ओ,
1: आप शैम्पू तो हफ्ते में 2 से 3 बार कर ही रहे हो। और बहुत चिप चिप नहीं, थोड़ा सा, जैसे आप मॉइस्चराइजर बॉडी को लगा रहे वैसा समझ के लगाइए तेल।
0: जो लोग नहीं लगाते हैं बालों में तेल, चाहे वो अपनी मान्यता की वजह से या फैशन की वजह से या लापरवाही की वजह से, उनके बालों पर क्या असर पड़ता है?
1: देखो, सिर्फ बालों से नहीं, ये बालों का जो इकोसिस्टम सपोर्टिव सिस्टम है, आपका मेन कॉज क्या है, अगर हेयर फॉल का मेन कॉज अलग है, अगर मैंने उसको नहीं ठीक किया तो सिर्फ तेल लगाने से काम नहीं होने वाला।
0: जी, वो एक पूरा स्कैल्प और पूरा इकोसिस्टम,
1: एक होलिस्टिक अप्रोच ले करना चाहिए।
0: जी बिल्कुल।
1: दूसरा, मैं ये कह रही थी कि जो आपने देखेंगे ना, जो तेल लगाते हैं, रेगुलर तेल लगाते हैं, उनका शायद बाल झड़ने का प्रमाण जल्दी ठीक हो जाता है।
0: जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको फिर बोल दीजिए, बहुत सारे लोगों को समझ में आए।
1: जो बालों में तेल लगाते, बालों में मतलब स्किन पर, जब बालों में हम तेल लगाते हैं वो कंडीशनिंग करके होता है, सर के स्किन को तेल लगाते हैं वो इकोसिस्टम इंप्रूव करने का काम करता है,
0: उनके बाल सही सलामत रहते हैं,
1: रहने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
0: जी, बहुत बढ़िया है। अब यहाँ पर एक गाना आएगा और वो सावन की घटा फिल्म का गाना है, जुल्फों को हटा दे चेहरे से, थोड़ा सा उजाला होने दे। सुनते हैं ये गाना।

0: इतने जुल्फों के गाने हम बजा रहे हैं और इतनी इंपॉर्टेंट बातें कर रहे हैं. आपने कई ऐसी पॉपुलर मान्यताओं में तोड़फोड़ कर दी जिनको हम मानते थे कि जैसे झाग वाला शैम्पू, तेल ना लगाना, ये तमाम बातों को लेकर बड़ी उपयोगी जानकारी आपने दी. और बालों को लेकर जो फैशन है, मतलब तरह तरह के कलर्स लगाना, आजकल तो लोग पर्पल और नीला और हरा क्या क्या रंग बालों के कर लेते हैं, वो कितना नुकसानदेह, अब इस पर आ जाते हैं. पहले
1: आपका बैंक बैलेंस है और आपको खर्चा करना है.
0: हाँ.
1: कितना खर्चा करना चाहते हो ताकि आपका बैंक बैलेंस थोड़ा नेगेटिव में जाए, ये आपको डिसाइड करना है.
0: बहुत ही इंटरेस्टिंग आंसर है ये.
1: मतलब ये जो कलरिंग करते हैं, बहुत जो डार्क कलर्स अलग तरीका करते हैं,
0: पहले ये नहीं होता था, लेकिन आजकल बहुत ही वो जो बम्बैया शब्द है, अतरंगी कलर्स,
1: या बट ये आपका फैशन है
0: जी.
1: पर ये फैशन आएगा आपको नुकसान के साथ आएगा.
0: राइट.
1: आपको चलने वाला है?
0: नहीं
1: नहीं, आप बोल रहे नहीं, पर किसी को चलने वाला भी हो सकता है
0: जी.
1: आप

0: चलूंगी तो कैसा लगेगा, मैं करके देखती हूँ,
1: हाँ
0: ठीक है?
1: हाँ
0: एक बार करके देखो, दो बार करके देखो, आप डिसाइड करो कि आपको डैमेज कितना हो रहा है, देन यू टेक अ कॉल कि आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: हम ऐसे जनरलाइज मैं स्टेटमेंट नहीं कर सकते कि नहीं करो,
1: लेकिन
0: करना
1: आपको
0: है।
1: देखना है कि
0: हाँ,
1: कितना नुकसान हो रहा है,
0: हो रहा है नुकसान, आप वो नुकसान सहन करने को तैयार हैं, ठीक है, फिर
1: तब
0: आगे
1: करिए
0: बढ़िए।
1: जी। और एक उम्र के बाद, आजकल तो एक उम्र के पहले भी बाल सफेद हो जाते हैं और लोगों को जरूरत पड़ती है बाल काले करने की, और उसमें केमिकल कलर्स का इस्तेमाल कुछ लोग करते हैं जो बाजार में उपलब्ध होते हैं, या आप जाके प्रोफेशनल से लगवाते हैं, और दूसरा तरीका है मेहंदी लगाने का। इन दोनों मुद्दों पर अपनी बात रखिए।
0: जो ग्रे होते हैं, जिनके ग्रेइंग जो शुरू होती है 20 साल के पहले, उसको जेनेटिक बैकग्राउंड है।
1: जी, उसको
0: कुछ
1: रोक सकते हैं?
0: कम कर सकते हैं, कभी कभी रिवर्स भी हो सकता है, पर बहुत ज्यादा नहीं है। कुछ तरह के लोशंस है मार्केट में जिसके रिजल्ट्स हमने देखे हुए हैं, पर इसका 100% नहीं उपयोग होता है, 40-50% इम्प्रूवमेंट होता है लोगों में। और जो उम्र के हिसाब से ग्रे बाल होते हैं, उसको रिवर्स करने का अभी साइंस ने कोई तोड़ नहीं डाला है उसमें, तो उसको आपको कलर करना होता है। अभी कलर कौन सा करें, कलर में बहुत सारे वैरायटीज है, लेकिन एक स्टैंडर्ड कंपनी का जिससे ड्राई नहीं होते हैं और जिसकी एलर्जी नहीं है। कुछ लोगों को डाई की एलर्जी भी होती है, तो उनको वो कलर नहीं सूट होता है, फिर बगैर वो इनग्रे पीपीडी फ्री वाला कलर लेना पड़ता है।
1: आजकल वो एक सेंटेंस बहुत चलता है ना, अमोनिया वाला कलर और
0: हाँ, अमोनिया
1: अमोनिया
0: से
1: फ्री
0: थोड़ा
1: कलर।
0: डैमेज कम हो जाता है,
1: जी
0: क्योंकि ये तो हेयर डाई है, अमोनिया रहेगा तो थोड़े ड्राई होते हैं बाल, डैमेज मतलब ड्राई होते हैं, तो अमोनिया फ्री से ड्राइनेस कम हो जाता है। जैसे ही आप, वैसे ही जैसे आपका कलर डाई भी लाइट कलर का होगा, गोल्डन होगा, तो ड्राई बहुत ज्यादा ज्यादा होते हैं। मेहंदी लोग इसके लिए लगाते हैं कि वो ये कलर डाई से डरते हैं, पर अगर आप देखेंगे कलर डाई इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, साइड इफेक्ट्स वाले होने वाले प्रमाण बहुत कम है,
1: बिल्कुल।
0: पर मेहंदी लगाने से ड्राइनेस काफी ज्यादा आता है बालों में।
1: तो इसमें एक फैसला करना पड़ेगा
0: हाँ,
1: कि इन दोनों में से कौन सी चीज ठीक है।
0: अमोनिया फ्री अच्छे कंपनी का डाई,
1: जी
0: उसके साथ आपको कंडीशनर करिए तो आपके ड्राई नहीं होंगे बाल। तो ये जो डाई करना है, कलर डाई, अगर आप ग्रे के लिए करना चाहते हैं तो नुकसान नहीं होता है, हम सभी लोग करते हैं, मैं भी करती हूँ, पर आप बहुत अलग तरह के मतलब रेड वाले कलर करोगे तो आपके बाल ड्राई होते रहेंगे, फिर वो ड्राई बालों को ठीक करने के लिए आप दूसरी प्रोसेस करोगे, तीसरी प्रोसेस करेंगे, तो ये तो विशेष साइकिल चालू रहेगी।
1: बिल्कुल। तो इसलिए समझदारी से चीजों का
0: समझदारी से
1: इस्तेमाल
0: करना
1: करना जरूरी
0: जरूरी
1: है। यहां पर एक गाने की बारी है।

0: ये जो हेयर कलर्स हैं, क्या ये कोई बड़ा नुकसान अचानक कर सकते हैं कि बालों का एकदम बड़ा पैच अचानक गायब हो गया?
1: अगर आपका कलर लो क्वालिटी का है, उसमें इरिटेशन बहुत ज्यादा है, रिएक्शन हो गई आपको, यस, कुछ लोगों को रिएक्शन होती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ये रिएक्शन वाली बात हुई तो डेफिनेटली यस
0: तो इसको लेकर सावधानी की जरूरत
1: यस
0: है। एक बहुत बड़ी और कॉमन समस्या हर उम्र के लोगों में है और वो डैंड्रफ की समस्या है, जिसको लेकर भी विज्ञापन इंडस्ट्री बहुत सक्रिय है। तो डैंड्रफ से जुड़ी भ्रांतियां दूर कीजिए।
1: डैंड्रफ के साथ बहुत लोगों को एक स्टिकी टाइप का डैंड्रफ होता है, किसी लोगों को फ्लेकी फ्लेकी
0: जो
1: टाइप का
0: जो
1: डैंड्रफ
0: नीचे
1: होता
0: गिरता
1: है,
0: रहता है।
1: गिरता रहता है। लोगों में धारणा ऐसी है कि डैंड्रफ हुआ तो मुंह से हुए, ये गलत
0: अरे
1: है, ये गलत है। वो डैंड्रफ फेस पर आता है और फेस में, वो
0: जी
1: अलग है, मुंह से का पैथोजेनेसिस बिल्कुल अलग है और डैंड्रफ का अलग है।
0: जी
1: डैंड्रफ के प्रकार जो होते हैं उसमें आपको समझना चाहिए माइल्ड मॉडरेट सीवियर है, क्योंकि वो उसके हिसाब से ट्रीटमेंट अलग होती है। यहां मैं सावधान करना चाहूंगी कि क्लिनिकल प्रैक्टिस में जब हम टेस्ट करते हैं, टेस्ट मतलब हम स्कोप के नीचे देखते हैं, बहुत सारे आधे लोगों को स्कैल्प सोरेसिस होता है। ये स्कैल्प सोरेसिस अलग बीमारी है,
0: जी
1: या जैसे हमारे बॉडी में सोरेसिस है वैसे एक स्कैल्प सोरेसिस एक प्रकार है।
0: उसके बारे में भी बता
1: हाँ,
0: दीजिए।
1: तो ये स्कैल्प सोरेसिस हमको वो टेस्ट करने मतलब ट्राइकोस्कोप से समझ में आती है कि स्कैल्प सोरेसिस है या डैंड्रफ है। जो जो लोगों को डैंड्रफ करके डायग्नोस हुआ, 50% लोगों में स्कैल्प सोरेसिस निकला, इसका हमने रिसर्च किया हुआ है। तो स्कैल्प सोरेसिस की ट्रीटमेंट अलग है, हालांकि उसको क्योर नहीं है, बट हम बिल्कुल कंट्रोल रख सकते हैं दवा से। दवा भी बहुत सिंपल है, बहुत हार्श दवा नहीं है, पर रिकरेंस इज वेरी कॉमन, तो लोग फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं रो, तो उसको कुछ चीजें ऐसी होती है कि रिकरेंट होती रहती है। कंट्रोल करना हमारे, जैसे हम डायबिटीज की दवा लेते हैं, ब्लड प्रेशर की दवा लेते हैं, हम ऐसे बोलते हैं क्या कि मुझे खाना नहीं है, कितने सालों तक मैं खाऊं,
0: ऐसा तो कभी नहीं हो सकता
1: ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। तो कुछ चीजों को हम एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए।
0: जी। कई शैम्पूज इस तरह के विज्ञापन के साथ आते हैं कि वो डेंड्रफ के दुश्मन हैं, क्या ऐसा होता है?
1: शैम्पू डैंड्रफ के दुश्मन है कि शैम्पू डैंड्रफ के लिए है?
0: बताइए कि शैम्पू डेंड्रफ हटाते हैं या नहीं हटाते हैं?
1: नहीं, कुछ शैम्पू डैंड्रफ हटाते हैं, और बहुत बार कैसे होता है कि सेम तरीके का शैम्पू जब आप इस्तेमाल कर रहे हो और कुछ महीनों के बाद, कुछ दिनों के बाद वो शैम्पू काम करना बंद हो जाता है।
0: अच्छा,
1: मतलब
0: ऐसा भी
1: आपको
0: होता है।
1: लगता है कि अब ये काम नहीं कर रहा है, क्योंकि वो इंग्रेडिएंट को कभी कभी, ये मैलेजिया फरफर करके एक फंगा होता है, वो काम नहीं करते, तो दूसरा इंग्रेडिएंट हुआ शैम्पू आप ले सकते हो। पर भी आपके नहीं जा रहे, तो आपको देखना है कि आपका स्कैल्प सोरेसिस नहीं है ना, आपको नहीं पता चलेगा। दोनों स्कैल्प सोरेसिस और डैंड्रफ बहुत दिखने में सेम दिखते हैं। इससे अच्छा मैं मैसेज देना चाहूंगी कि एंटी डैंड्रफ शैम्पू आपने ट्राई किया है,
0: जी
1: आपको फर्क नहीं हो रहा है, तो आपको स्कैल्प सोरेसिस है या नहीं है इसकी जान लीजिए।
0: ओके, उसको आपको टेस्ट करवा लेना
1: हाँ,
0: है। जी, ये एक थंब रूल हो
1: थंब
0: गया।
1: रूल, मतलब लोग
0: बिल्कुल
1: ऐसे ही बहुत सालों तक एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज करते हैं, एक छोड़ा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और बहुत परेशान हो जाते हैं।
0: हाँ,
1: तो आपको देखना है कि आपको स्कैल्प सोरेसिस है कि नहीं है,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: ये मैसेज जाना चाहिए।
0: ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और अब मुझे लगता है एक गाना करते हैं और उसके बाद हम हेयर ट्रांसप्लांट की बात करेंगे, जो एक बहुत
1: बिल्कुल,
0: बड़ा मुद्दा है।
1: बहुत बड़ा
0: तो
1: मुद्दा
0: यहाँ पिया का घर फिल्म का गाना आ रहा है, ये जुल्फ कैसी है
1: ओ
0: जंजीर जैसी है ना।

0: डॉक्टर, हमने ये इतनी सारी बातें की तो लोगों को ये समझ में आ गया कि क्या तरीका है बालों की देखभाल का, लेकिन कई बार ये होता है कि बाल तो चले ही गए और एक और बहुत ज्यादा चलन चारों तरफ है कि कोई एक व्यक्ति अपना ट्रांसप्लांट करवा के आता है और एकदम उसका रूप बदल जाता है और सब लोग उससे पूछने लगते हैं कि ये क्या किया, तो पता चला कि उसने ट्रांसप्लांट करवाए और बाल, मतलब लुक जो है वो पुराना वाला आ गया। ये तरीका क्या जनरलाइज्ड सब लोगों के लिए कारगर है या ये कुछ कुछ लोगों पर काम करता है?
1: सब लोगों पर कारगर के लिए हमें जानना जरूरी है कि उसका अंडरलाइन कॉज क्या है।
0: जी,
1: अगर अंडरलाइन कॉज है एंड्रोजेनिक एलोपेशिया या सिकेट्रिशियल एलोपेशिया बोलते हैं, उसमें हेयर ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल होता है। अगर हेयर फॉल का कारण अलग है और आप नहीं जानते हैं और हेयर ट्रांसप्लांट करने से मतलब नहीं है। अभी सेफ्टी के इश्यू में अगर बात करें तो बहुत बड़ी, मतलब हेयर ट्रांसप्लांट ऐसी हो रहा है आजकल कि बहुत सेंटर पर टेक्नीशियंस हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं, टेक्नीशियंस एनेस्थीसिया देते हैं।
0: ओहो हो हो,
1: तो ये गलत बात हो जाती है क्योंकि कॉम्प्लिकेशन जो भी, ये एक प्रोसीजर है जो लोकल में होती है। जैसे आपके यहाँ हम सूचर करते हैं, समझो आप एक सर्जन से सूचर करवाए या कंपाउंडर से सूचर करना पसंद करोगे?
0: सीधी सी बात है।
1: लोकल एनेस्थीसिया देते हो, डॉक्टर को सब मालूम

0: है कि कुछ कॉम्प्लिकेशन हुआ, रिएक्शन हुआ, कैसे मैनेज करना है, कितने अमाउंट में लोकल एनेस्थीसिया देना जरूरी है, अंडरलाइन पेशेंट का हिस्ट्री क्या है, पेशेंट स्मोकर है या कोई कन्वर्शन की मेडिसिन ले रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, ये सब कौन कर सकता है? डॉक्टर ही कर सकता है.
1: यस
0: अगर इसमें उदाहरण मैं देना चाहूंगी तो अगर मैंने आपको एक चक्कू दिया जो आप मूर्तिकार है, और एक चक्कू मैंने छोटे बच्चे को दिया, चक्कू चक्कू ही है पर छोटा बच्चे के हाथ में बहुत डेंजरस है, और आप मूर्तिकार हैं, आप एक अच्छी मूर्ति बना सकते हैं, तो आपके हाथ में बहुत सेफ है, तो
1: यस
0: आपका सर आपके किसके हाथ में दे रहे हैं वो जानना जरूरी है.
1: बहुत ही इंपॉर्टेंट है.
0: यस,
1: बिल्कुल. ये हेयर ट्रांसप्लांट की प्रोसेस क्या है और ये कितना महंगा है?
0: ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है
1: जी
0: क्योंकि ये वन टाइम एक ही दिन में होता है हेयर ट्रांसप्लांट, और प्रोसेस ये है कि आपके जो पीछे के बाल होते हैं, मतलब हमारे गर्दन के पीछे के साइड के ऊपर के जो बाल होते हैं, वो जल्दी नहीं जाते हैं, मतलब थिन नहीं जल्दी होते हैं, तो वहां से निकाल के रिपोजिशनिंग, बेसिकली वहां से बहुत घने होते, वहां से कुछ प्रमाण से 2000, 3000, 4000 हेयर फॉलिकल्स, मैं हेयर नहीं बोल रही हूँ, हेयर फॉलिकल्स, एक फॉलिकल में शायद दो भी हेयर हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं,
1: जी
0: वो हम जितना एरिया होगा वो हिसाब से गंजे एरिया पर डालते हैं. अभी डालने का तरीका और लगाने का तरीका बताती हूँ. लोकल एनेस्थेशिया में वो रूट्स निकालने पड़ते हैं, तो रूट्स के साथ हेयर होते हैं, साथ में छोटे हेयर होते हैं क्योंकि ट्रिम करना पड़ता है,
1: जी
0: तो रूट्स को हम जैसे हम झाड़ की सैम्पलिंग करते हैं वैसे रूट्स को निकाल के हम गंजेपन को जगह पर एक निक देते हैं, स्लिट देते हैं छोटी सी, और उसमें हम डिपॉजिट करते हैं ताकि बॉडी उसको रूट्स को लिए और हेयर उसमें से बाहर निकले, बट हेयर निकलने का टाइम रहता है 6 से 9 महीना,
1: जी
0: उसके बाद वहां से बाहर, और आप उसको कॉम कर सकते हैं, शेप नॉर्मल, मतलब
1: मतलब
0: आपके
1: वो एक
0: ओरिजिनल,
1: ओरिजिनल बालों की तरह हो जाते हैं,
0: बिल्कुल ओरिजिनल
1: जैसे
0: बालों
1: एक
0: के.
1: पौधे को यहां से हटा के वहां लगा
0: यस,
1: दिया.
0: वहां लगा दिया.
1: जी. और आपने कहा कि एक महंगी प्रोसेस है,
0: ये थोड़ी महंगी प्रोसेस होती
1: क्या
0: है,
1: ये फेल्योर भी हो सकती है?
0: फेल्योर रेट बहुत कम है,
1: जी
0: अगर अच्छे सर्जन ने किया तो फेल्योर रेट बहुत कम है.
1: जी यहां हम एक गाने के लिए रुकते हैं.

0: डॉक्टर, इतनी सारी बातें हमने की इसमें ना, महिलाओं की बातें हमने की, पुरुषों की बातें की, अलग अलग उम्र के लोगों की बातें की, बातें टीनेज से शुरू हुई, बच्चों में बालों की जो समस्याएं इन दिनों में आप देख रही हैं वो क्या हैं और क्या उनके निदान और सावधानियां हैं?
1: आप अभी सही पकड़े हो. बच्चों में बहुत कॉमन हो रहे हैं बालों की समस्या
0: जी.
1: उनके रीजन अलग है, जो बड़ों में है वो रीजन नहीं है बच्चों में. फंगल इन्फेक्शन है बच्चों में, बच्चों में एलोपेशिया एरियाटा कॉमन हो रहा है. ये दो चीजें बहुत सारे हमने कॉमन देखे, और जनरली पैंडेमिक के बाद एलोपेशिया एरियाटा बहुत कॉमन हो गया बच्चों में, जो अभी बड़ों में कम दिखाई देता है लेकिन बच्चों में ज्यादा दिखाई देता है. और इसमें छोटे छोटे ऐसे पैचेस, राउंड राउंड पैचेस, बहुत सारे राउंड राउंड पैचेस आते हैं. बच्चे स्कूल में जाना टालते हैं क्योंकि उनके स्कूलमेट्स उनको चिढ़ाते हैं. आप कभी भी देखेंगे तो कैप लगाए हुआ कोई बच्चा दिखेगा तो एक तो फंगल इन्फेक्शन होगा उसको, या तो एलोपेशिया एरियाटा होगा.
0: ओके.
1: फंगल इन्फेक्शन के लिए कैप जो पहनते हैं, कोई कैप पहनता है, वो कैप शेयर नहीं करना चाहिए, उनकी कोम शेयर नहीं करना चाहिए. और तुरंत ट्रीटमेंट इसके लिए जरूरी है कि कुछ फंगल इन्फेक्शन जो स्काल्प में होते हैं उससे परमानेंट हेयर डैमेज हो जाते हैं. परमानेंट मतलब वहां कभी बाल नहीं आएंगे.
0: अरे बाप रे.
1: हाँ, तो उसके लिए वो केरियन कहा जाता है, तो उसके लिए ट्रीटमेंट जरूरी है. और इसकी ट्रीटमेंट ऐसे नहीं कि एक दिन, दस दिन, इसकी ट्रीटमेंट कभी कभी 4 हफ्ते से 6 हफ्ते तक भी चल सकती है. फंगल इन्फेक्शन जो होता है बालों के नीचे के हिस्से तक जाके बैठता है, तो उसको निकालने के लिए टाइम लगता है. और ये 6 हफ्तों तक मेडिसिन लेनी होती है. तो इनके टॉवल्स अलग, कोम अलग, सोप अलग.
0: अच्छा, इतना सब करना पड़ता
1: है. इतना सब करना पड़ता है
0: जी.
1: एलोपेशिया एरियाटा, अभी एलोपेशिया एरियाटा की जो बात करते हैं, सब लोग घर का सुनते हैं, इन्फ्लुएंसर का सुनते हैं, कुछ अलग अलग अलग चीजें यूज करते हैं जो नॉन स्पेसिफिक है. इसमें टाइम बहुत निकल जाता है, कभी कभी बहुत साल भी निकल जाते हैं. और जब तक हमारे पास आते हैं उनके 5-6 साल हो जाते हैं. ये 5-6 साल इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये टाइम पर जो स्टेम सेल्स होते हैं उनकी जो रीग्रोथ की पोटेंशियल है वो कम होती जाती है.
0: जी, जी, जी.
1: जितना आपने टाइम गंवाया उतना आपका हेयर ग्रोथ की चांसेस कम होती जाती है. तो इस पर रिसर्च अभी लेटेस्ट जो डेवलप्ड हुए है उसमें बहुत सारे ऐसे रिसर्च हुए हैं जो बालों की ये जो एलोपेशिया एरियाटा पर इफेक्टिव रीग्रोथ 100% पॉसिबल होने के चांसेस है.
0: ओके, तो एक उम्मीद बंधी है.
1: यस, बट ट्रीटमेंट टाइम पर लेना, इट्स अ टाइम बाउंड डिसीज मैं कहूंगी.
0: हमारी पूरी बातचीत में ये बात बार बार आती है कि समय पर सावधान होकर इलाज की तरफ बढ़ना है. यहाँ हम एक गाने के लिए रुकते हैं.

0: इतनी लंबी बातचीत का जो आखिरी मकाम है, मुझे लगता है कि यहां ये बात करनी जरूरी है कि एक अच्छी लाइफस्टाइल में बालों की सामान्य रूप से देखभाल का क्या पैटर्न होना चाहिए। इसमें एक और चीज जोड़ देता हूं कि बदलते हुए मौसमों में भी किस तरह से हम अपनी रूटीन लाइफस्टाइल में बालों की देखभाल करते रहें, क्या आइडियल तरीका है?
1: आपका लाइफस्टाइल के साथ आपका शैम्पू कैसे यूज करते हो, आप कितने कड़ी धूप में जाते? बहुत बार कड़ी धूप में हम प्रोटेक्ट नहीं करते बालों को, तो कड़ी धूप में से भी आपके हेयर फॉल हो सकते हैं बहुत कड़ी धूप में। तो नॉर्मल शैम्पू, अच्छा वाला शैम्पू जो हार्श नहीं हो, बहुत झाग वाला नहीं हो, रूटीनली आपको 2 से 3 बार हफ्ते में करना चाहिए। साथ में अगर ऑयल लगा के करे 1 घंटा पहले या रात को ऑयल लगा के करे तो बेहतर है। खाने में आप ब्रेकफास्ट स्किप नहीं कीजिए, जो अभी आजकल आया ऑटोफेजी, ऑटोफेजी और 16-16 घंटे खाते नहीं है, उसका असर बालों पर गिरता है। तीसरी बात जो है कि बहुत सारे लोग वेजिटेरियन हैं, तो हमारे इसमें अमाइनो एसिड्स की थोड़ी कमतरता होती है, क्योंकि हमारे वेजिटेबल्स में इतने अमाइनो एसिड्स नहीं होते हैं, तो अमाइनो एसिड लेना जरूरी है। फिर आपका प्रोटीन इंटेक भी, बहुत बार वेजिटेरियन लोगों का प्रोटीन इंटेक एडिक्वेट नहीं होता है, तो उस पर आपको ध्यान देना जरूरी है। ये नॉर्मल लोगों के लिए बोल रही हूं जिसके बाल नहीं झड़ रहे हैं
0: जी।
1: जब आपके बाल झड़ते हैं तो क्या कारण है, रीजन क्या है, वो एनालिसिस करना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो रीजन के हिसाब से ट्रीटमेंट अलग अलग होती है।
0: बिल्कुल।
1: और सोना,
0: नींद
1: मॉर्निंग से हो गया, अभी शाम का टाइम, शाम को हेवी खाना नहीं खाना है। आप कहेंगे मैं 11 बजे नॉनवेज खा के सोता हूँ, आपके इंटेस्टाइन सोने के टाइम पर आप उसको इंटेस्टाइन को जगा रहे हो
0: जी जी,
1: तो वो नहीं ठीक है। ओकेशनली ठीक है, पर हर बार डेली डेली होते रहेगा तो नहीं चलेगा। बाहर का आप बहुत सारा चीजें खाते हैं जो प्लास्टिक में आती रहती है, टेस्ट के लिए एक बार खा लिया ठीक है, पर आपने उसको आदत ही बना लिया तो फिर कैसे होगा?
0: बिल्कुल।
1: तो ये सारी चीजें, ये नॉर्मल हेयर को मेंटेन करने के लिए।

0: बाकी तो फिर बीमारी के लिए तो हम लोग हैं।
1: तो मतलब ये है कि एक तो नॉर्मल जो हमारी एक लाइफस्टाइल को हमको पालन करना है और सावधानियां जरूरी तौर पर रखनी है। डॉक्टर रचिता धुरत, आप विविध भारती के स्टूडियो में आई और इतनी सारी जानकारियां आपने बड़े विस्तार से दी, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: धन्यवाद।
2: श्रोताओं, हसीन जुल्फों पर, खूबसूरत बालों पर न जाने कितने ही गीतकारों ने गीत भी लिखे हैं। जब हम सजते संवरते हैं तो अपनी हेयर स्टाइल को खास तरह से संवारते हैं। बालों के स्वास्थ्य की किस तरह से देखभाल की जाए कि इनकी सुंदरता बनी रहे, तो आज के सेहतनामा में बालों की समस्या और देखभाल, इस विषय पर डॉक्टर रचिता धूरत से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग आपने सुना। अगले सोमवार आज ही के दिन एक नए विषय को लेकर फिर हाजिर होंगे हमारे विविध भारती के स्टूडियो में। आपके स्वास्थ्य को लेकर फिर होंगे एक नए विशेषज्ञ। तो सुनते रहिए सेहतनामा। कार्यक्रम का संपादन किया मनीषा सिंह ने, प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा।
2: किशोरदन एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: किशोरदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे किशोरदा आ गए सुबह सुबह, मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।

ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: की है। रियासत के सरकारी अस्पतालों में फर्टिलिटी और IVF खिदमात को मजीद वसत देने की वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने ओहदेदारों को हिदायत दी। और मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने आज महबूब नगर जिले के दौरे के दौरान मुकामी रुकने पार्लियामेंट DK अरुणा के हमरा महबूब नगर रेलवे स्टेशन पर जारी जदीद कारी के कामों का मुआयना किया। और अब पेश है खबरों की तफसील। हैदराबाद में मूसा रामबाग हाई लेवल ब्रिज का वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कुछ देर कबल इफ्तिताह किया। 52 करोड़ रुपयों की लागत से तामीर किए गए इस पुल को इस तरह डिजाइन किया गया है कि मूसी नदी में 1,50,000 क्यूजिक तक सैलाबी पानी आने की सूरत में भी कोई दुश्वारी पेश न आए। पुल की तामीर से अंबरपेट और मूसा रामबाग के दरमियान आमदरफ्त मजीद बेहतर होने की तवक्को है। रियासती वजीर ज़राअत तुम्मला नागेश्वर राव ने बताया कि अग्री स्टेक पर मबनी खादों की तकसीम के निजाम में पहला संगमेल मुकम्मल करने पर मरकजी हुकूमत ने तेलंगाना के लिए 175 करोड़ रुपए की तरगीबी रकम मंजूर की है। मरकजी वजीर ज़राअत की जानिब से आज जारी किए गए मकतूब में कहा गया है कि रियासत ने मुकर्रा मियार मुकम्मल कर लिए हैं। ये रकम SASCI स्कीम के तहत डिजिटल ज़राअत के शोबे में फराहम की जाएगी। वजीर ने बताया कि किसान रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करने पर मरकजी हुकूमत पहले ही 424 करोड़ रुपए की तरगीबी रकम तेलंगाना को फराहम कर चुकी है। रियासत के सरकारी अस्पतालों में फर्टिलिटी और IVF खिदमात को मजीद उसत देने के लिए तिब्बी व सेहत के वजीर दामोदर राज नरसिम्हा ने ओहदेदारों को हिदायत दी है। सेक्रेटरियट में मुनक़िदा जायजा इजलास में वजीर ने गांधी और पेटला ब्रुज के IVF मराकज में अब तक 39,802 अफराद को खिदमत फराहम किए जाने की तफसीलात हासिल किए। ओहदेदारों ने बताया कि रियासत में 477 IRTO सरोगेंसी मराकज मौजूद हैं। इनमें 379 मराकज का मुआयना किया गया है। रियासती वजीर उत्तम कुमार रेड्डी ने रियासत में प्रजापालाना हुकूमत की कामयाबी के 1000 दिन की तकमील पर खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि BRS की नाकारा हुकूमत को शिकस्त देकर रियासत में अवामी हुकूमत कायम की गई है। प्रजापालाना हुकूमत में खवातीन को मुफ्त बस में सफर की सहूलत, कर्जों की माफी, बारीक चावल की सप्लाई, इंद्रमा मकानात की फराहमी जैसे फलाही स्कीमें कामयाबी के साथ चल रही हैं और मुस्तकबिल में भी ये सिलसिला जारी रहेगा। तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत के 1000 दिन मुकम्मल होने के मौके पर रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट व BC बहबूद पूनम प्रभाकर ने कहा कि आवाम से किए गए वादों को मरहलावार पूरा किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि खवातीन को मुफ्त बस में सफर की सहूलत के जरिए 12,075 करोड़ रुपए का फायदा पहुंचा है। रैतु भरोसा के तहत 36,000 करोड़ रुपए और किसानों की कर्ज माफी के लिए 20,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत के 1000 दिन मुकम्मल होने पर TPCC के सदर महेश कुमार गौड़ ने अवाम और कांग्रेस पार्टी के कारकुनों को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि जिले शोबे पर 1,75,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। महेश कुमार गौड़ ने बताया कि 20,000 करोड़ रुपए से जायद की रकम किसानों के कर्ज माफ किए गए हैं। 25,35,000 किसानों को फायदा पहुंचा है। उन्होंने कहा कि रैतु भरोसा की रकम बढ़ाकर फी एकड़ 12,000 रुपए कर दी गई है। रियासत में जारी रेलवे प्रोजेक्ट से मुतालिक ज़ेरे इल्तिवा उमूर को तेजी से हल करने की चीफ सेक्रेटरी संजय जाजू ने ओहदेदारों को हिदायत दी। सेक्रेटरियट में जुनूबी वस्ती रेलवे के जनरल मैनेजर संजय कुमार श्रीवास्तव के साथ मुनक़िदा इजलास में चीफ सेक्रेटरी ने बताया कि 50,870 करोड़ रुपये की लागत से 17 रेलवे प्रोजेक्ट्स के लिए 2,023 किलोमीटर तवील तौसी काम के DPR तैयार किए गए हैं। इजलास में अराजी के हुसूल, मुख्तलिफ इदारा इजाजत नामे, रेलवे अंडरपासेस और ओवर ब्रिजेस की तामीर से मुतालिक उमूर का जायजा लिया गया। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने आज तेलंगाना के जिले जोगुलम्बा गढ़वाल का दौरा किया, जहां उन्होंने बाला ब्रह्मेश्वरी स्वामी मंदिर में खसूसी दर्शन किए और रियासत में अमन और सलामती के लिए खसूसी पूजा की। इसके बाद 6,70,00,000 रुपये की लागत से तामीर किए जा रहे जोगुलम्बा गढ़वाल रेलवे स्टेशन के कामों का जायजा लिया। मीडिया से बात करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना के जुमला 42 रेलवे स्टेशनों की तजीन नौ का काम तेजी से जारी है। किशन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना भर में 80,000 करोड़ रुपए के रेलवे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने आज महबूब नगर जिले के दौरे के दौरान मुकामी रुकने पार्लियामेंट DK अरुणा के हमरा महबूब नगर रेलवे स्टेशन पर जारी जदीद कारी के कामों का मुआयना किया।
1: ఇంపార్టెంట్ రైల్ హబ్ ఇది గద్వాల్, కాబట్టి దీనికి కనెక్టివిటీ మరి బాగా ఉండాలనే దృక్పథంతో ముందుకెళ్తా ఉన్నాం. ఎవ్రీడే 7,000 మంది ప్యాసింజర్స్ గద్వాల్ ట్రైన్ కు వస్తూ పోతూ ఉంటారు, కాబట్టి ఒక ఇంపార్టెంట్ రైల్వే హబ్ గా మేము గుర్తిస్తున్నాం. సుమారు 34 ట్రైన్లు ఎక్స్ప్రెస్ గాని ప్యాసింజర్స్ గాని ఆగుతూ ఉంటాయి, కాబట్టి దీంట్లో భవిష్యత్తులో ఈ రైల్వే స్టేషన్ అభివృద్ధి జరిగిన తర్వాత మరిన్నిగా ట్రైన్లు ఆపడానికి అవకాశం ఉంటుందనే విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా

0: तेलंगाना पोस्टल सर्कल के जेर एहतमाम 1 से 3 सितंबर तक हैदराबाद में दूसरे ऑल इंडिया पोस्टल पैरा बैडमिंटन और पैरा टेबल टेनिस टूर्नामेंट का इनेकाद किया जाएगा। तेलंगाना सर्कल के चीफ पोस्ट मास्टर जनरल DSV राममूर्ति ने ये इतला दी। उन्होंने बताया कि मोइनाबाद के फायरफॉक्स स्पोर्ट्स एंड रिजर्व रिजॉर्ट्स में मुनक्किद होने वाली इफ्तिताही तकरीब में चेवरला के रुकन पार्लियामेंट कुंडा विश्वेश्वर रेड्डी मेहमान खसूसी की हैसियत से शिरकत करेंगे। मुल्क की 11 रियासतों से 60 से ज्यादा पैरा एथलीट्स मुख्तलिफ जुमरों में मुकाबला करेंगे।
1: 11 సర్కిల్స్ నుంచి 60 పార్టిసిపెంట్స్ వస్తున్నారు. సెప్టెంబర్ 1 నుంచి సెప్టెంబర్ 3, సెప్టెంబర్ 1న మెయిన్ ఈవెంట్ విల్ బి ఇనాగరేటెడ్ బై ఆనరబుల్ ఎంపీ ఫ్రమ్ చెవెళ్ళ శ్రీ కొండా విశ్వేశ్వర రెడ్డి గారు. డిపార్ట్మెంట్ చేపట్టే వెల్ఫేర్ కార్యక్రమాల్లో భాగంగా ఈ పారా ఈవెంట్స్ లాస్ట్ ఇయర్ నుంచే స్టార్ట్ అయ్యాయి. ప్రీవియస్ ఇయర్ ఛత్తీస్గఢ్ లో ఇవి జరిగాయి, పారా టేబుల్ టెన్నిస్ అండ్ పారా బ్యాడ్మింటన్ ఈవెంట్. రెండో అవకాశం తెలంగాణ సర్కిల్ కి దక్కింది. ఈ 3 రోజులు జరిగే ఈవెంట్ లో పార్టిసిపేట్ చేసే ఈ స్పెషల్లీ ఏబుల్డ్ పార్టిసిపెంట్స్ అందరిని ఎంకరేజ్ చేయవలసిందిగా వీఆర్ రిక్వెస్టింగ్ ఈచ్ అండ్ ఎవరీ వన్.
0: वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़यादत में चल रहे प्रजा पालाना हुकूमत के 1000 दिन मुकम्मल हो गए हैं। इस सिलसिले में चीफ मिनिस्टर के दफ्तर ने एक हुक्मनामा जारी करते हुए इस बात की जानकारी दी। CMO के मुताबिक तेलंगाना भर में तरक्की, सामाजिक इंसाफ, गृह ज्योति, खवातीन को मुफ्त बस में सफर की सहूलत, किसानों के कर्ज माफी जैसी कई फलाही स्कीमें कामयाबी के साथ चल रही हैं और जिसका आवाम को बराह रास्त तौर पर फायदा पहुंच रहा है। इसी तरह रियासत की आमदनी में इजाफे के साथ साथ IT और ज़रई शोबे में भी खातिर ख्वाह कामयाबी हासिल कर ली गई है। कानून साज काउंसिल की कमेटियों का इब्तदाई इजलास आज कानून साज काउंसिल के इजलास हाल में मुनक्किद हुआ। चेयरमैन गुत्ता सुखेंद्र रेड्डी, असेंबली स्पीकर गड्डम प्रसाद कुमार और डिप्टी चेयरमैन बंडा प्रकाश ने इजलास में शिरकत की। इस मौके पर तखमीनियों की कमेटी, जंगलात व हयात और माहौलियात की कमेटी, सहूलियात कमेटी और लाइब्रेरी कमेटी के चेयरमैनों और अरकान का खैर मकदम किया गया। चेयरमैन गुत्ता सुखेंद्र रेड्डी ने कहा कि कमेटियों को अवामी रुकूमात के मौसर इस्तेमाल और हुकूमत की जानिब से नाफिज की जाने वाली स्कीमों पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। रियासत में खवातीन की हिफाजत के मामले में हुकूमत के रवैये और BRS कानून साज असेंबली के नायब कायद हरीश राव ने शदीद एतराज किया। गुरुकुल में तालीम हासिल करने के बाद नर्स की हैसियत से खिदमत अंजाम देने वाली एक नौजवान खातून के तुकगुड़ा में बहिमाना कत्ल पर रद्दअमल जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि कत्ल के बाद असमत दरी किए जाने की इत्तला तशवीशनाक है। हरीश राव ने इल्जाम आयद किया कि कांग्रेस हुकूमत के दौर में अमन व अमान की सूरत हाल बिगड़ गई है। माहौलियात के तहफ्फुज और हरियाली में इजाफे के मकसद से मिट्टी के बने गणेश और सीट गणेश की पूजा करने की मारूफ फिल्म अदाकार चिरंजीवी ने अपील की। उन्होंने ग्रीन इंडिया चैलेंज की जानिब से तैयार करदा सीट गणेश की मूर्तियों को अपनी रिहाइशगाह पर रुनुमाई की। गणेश उत्सव 2026 की तैयारियों के सिलसिले में GHMC के मरकजी दफ्तर में एक राबता इजलास मुनक्किद हुआ। GHMC कमिश्नर ने भाग्यनगर गणेश उत्सव कमेटी के नुमाइंदों, हैदराबाद सिटी पुलिस, वाटर बोर्ड्स, HMDA, हाइड्रा, महकमे बिजली समेत मुख्तलिफ महकमों के अहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। कमिश्नर ने बताया कि बालापुर से टैंकबंड तक गणेश जुलूस के रास्ते पर गणेश एक्शन टीमें तैनात की जाएगी। तेलंगाना ओपल स्कूल सोसाइटी ने SSC और इंटरमीडिएट कोर्सेज में दाखिलों के लिए दरख्वास्त जमा करने की आखिरी तारीख में तौसी कर दी है। टास्क के डायरेक्टर ने बताया कि तालीमी साल 2026-27 के लिए मुकर्रर फीस के साथ ऑनलाइन दरख्वास्तें 1 सितंबर से 15 सितंबर तक वसूल की जाएगी। और अब आखिर में सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। हैदराबाद में मूसी नदी में 1,50,000 क्यूजिक सैलाबी पानी आने के बावजूद काबिले बर्दाश्त मूसारामबाग हाई लेवल ब्रिज का वजीर आला रेवंत रेड्डी ने इफ्तिताह किया। वजीर ज़राअत तुम्मला नागेश्वर राव ने बताया कि अग्री स्टेक पर मबनी खादों की तकसीम के निजाम में पहला संगमेल मुकम्मल कर लिया गया है। रियासत के सरकारी अस्पतालों में फर्टिलिटी और IVF खिदमत को मजीद वसत देने की वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने अहदेदारों को हिदायत दी। और मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने आज महबूब नगर के दौरे के दौरान रेलवे स्टेशन पर जारी जदीद कार्य के कामों का मुआयना किया। ये आकाशवाणी हैदराबाद है। अब इलाकाई खबरें खत्म हुई।
2: ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन के साथ बिश्केक में द्विपक्षीय बैठक की। प्रधानमंत्री मोदी ने बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन से अलग हुई बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। उन्होंने पश्चिम एशिया क्षेत्र में हाल

0: के घटनाक्रमों की समीक्षा की। बाद में प्रधानमंत्री ने किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादो जापारोव से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं के बीच आर्थिक और वाणिज्यिक सहयोग को और बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने किर्गिस्तान की दो दिन की यात्रा के पहले दिन आज राजधानी बिश्केक में फ्रेंड्स ऑफ इंडिया के साथ संवाद किया।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिश्केक में भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ आत्मीय संवाद किया। प्रधानमंत्री ने भारत और किर्गिज गणराज्य के बीच मैत्री संबंधों को मजबूत करने में भारतीय समुदाय की ऊर्जा, उत्साह और महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। अपनी किर्गिस्तान यात्रा के दौरान श्री मोदी ने आज बिश्केक स्थित महात्मा गांधी स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री कल शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
0: पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए चौथे भारत जर्मनी पर्यावरण मंच की बैठक कल नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव तथा जर्मनी के पर्यावरण, प्रकृति संरक्षण, जलवायु संरक्षण और परमाणु सुरक्षा मंत्री कार्स्टेन श्नाइडर इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान द्विपक्षीय सहयोग को अधिक मजबूत करने और व्यावहारिक सहयोग को बढ़ाने के लिए पर्यावरण संरक्षण तथा जलवायु नीति से संबंधित प्रमुख मुद्दों पर चर्चा होगी। सरकार ने देश में चिप निर्माण इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए 1,27,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ सेमिकॉन योजना के दूसरे चरण को अधिसूचित किया है। इसके साथ भारत आने वाले वर्षों में वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग बाजार का लगभग 10% हिस्सा हासिल कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में बताया कि देश ने 10 साल के लक्ष्य के मुकाबले 4 साल में 85,000 सेमीकंडक्टर इंजीनियरों को तैयार करने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार का ध्यान वेफर फैब्रिकेशन से लेकर चिप उत्पादन तक देश को वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में मजबूती से स्थापित करने पर है।
2: वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग को भरोसा है कि आने वाले दशकों में भारत बड़े निवेश के लिए एक प्रमुख केंद्र बनेगा। इसका प्रमाण हमें सेमिकॉन 1 के तहत मंजूर की गई परियोजनाओं से मिलता है। इनमें कई इकाइयों ने भूमि पूजन के केवल 13 महीने के भीतर व्यावसायिक उत्पादन शुरू किया है। इसी तेज गति ने वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग का भारत पर भरोसा और मजबूत किया है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि वस्त्र और परिधान क्षेत्र न केवल भारत की सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है बल्कि लाखों लोगों को रोजगार और आजीविका भी प्रदान करता है। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने विद्यार्थियों से देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और मूल्यों से जुड़े रहते हुए वैश्विक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 903 हो गई है। 4,247 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। सभी 8 प्रभावित जिलों में राहत और बचाव अभियान तेजी से जारी है। इस बीच नेपाल में भीषण बाढ़ और जलग्रहण क्षेत्रों में तेज बारिश के कारण बिहार में गंडक और कोसी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। हालांकि पिछले 24 घंटों में दोनों नदियों के जलस्तर में कमी आई है। भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में 7.8% की वृद्धि दर्ज की गई। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में यह वृद्धि दर 6.9% थी। एएफसी अंडर 20 फुटबॉल एशियन कप 2027 के क्वालिफायर में भारतीय अंडर 20 पुरुष टीम और सीरिया के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक दोनों टीम गोल रहित बराबरी पर थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: శబ్ద తరంగాలపై శ్రవ్య సౌరభాలను దరిచేర్చే సారథి,
4: విజ్ఞాన వినోదాలను శ్రోతలకు అందించే వారధి,
3: ఆపాత మధురం ఆలోచనామృతాల నిధి.

0: ज़मीर रज़वी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बिश्केक में रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की। इस दौरान तिजारत, तवानाई और दिफाई उमूर पर तवज्जो मरकूज की गई। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत यूक्रेन में जंग के खात्मे की हर कोशिश की हिमायत करता है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने ईरान के सदर मसूद पेजिशकियान के साथ मीटिंग के दौरान जहाजरानी की आज़ादी और शहरियों की हिफाजत पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने किर्गिज जमहूरिया और आर्मेनियाई रहनुमाओं से भी मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म कल SCO समिट से खिताब करेंगे। भारत की मजमूई घरेलू पैदावार GDP आलमी उथल पुथल के बावजूद रवां माली साल की पहली सहमाही में 7.8% तक पहुंच गई। बिहार और झारखंड तवील अरसे से चले आ रहे तनाजे का तस्फिया करते हुए सोन नदी के पानी की तकसीम से मुतालिक माहदे पर पहुंच गए हैं। नेपाल में अचानक सैलाब के सानहे में मरने वालों की तादाद 900 से तजावुज कर गई है। राहत और बचाव के साजो सामान की कमी के दौरान 4,000 से ज्यादा अफराद अब भी लापता हैं। और मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी लायनल मेसी ने बैन अल-अक़वामी फुटबॉल से सुबुकदोशी का ऐलान किया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज जमहूरिया किर्गिस्तान के बिश्केक में शंघाई तआवुन तंजीम SCO सरबरा इजलास के मौके पर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ दोतरफा बातचीत की। बातचीत में भारत और रूस के दरमियान दोतरफा तआवुन के अहम शोबों तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और दिफा पर तवज्जो मरकूज की गई। मीटिंग के दौरान वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि उन्हें इस बात पर बेहद इत्मीनान है कि भारत और रूस के दरमियान तआवुन मुसलसल नई बुलंदियों को छू रहा है।
1: दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए हम मिलकर के काम कर रहे हैं। राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ना, यही हम दोनों की सोच रही है और आगे भी यही हमारा मूल मंत्र होगा।
0: यूक्रेन तनाजे के बारे में वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि तवील जंगों को खत्म करने की सिमत बढ़ना जरूरी है। उन्होंने मजीद कहा कि भारत अमन के लिए तमाम कोशिशों की हिमायत करता है और आइंदा भी करता रहेगा।
1: यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं। भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देता है। हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है।
0: मीटिंग के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि तमाम भारतीय शहरी सदर पुतिन को ब्रिक्स सरबरा इजलास के लिए भारत में खुशामदीद कहने के मुंतजिर हैं, जो आने वाले दिनों में नई दिल्ली में मुनाकिद होगा।
1: कुछ दिनों बाद भारत ब्रिक्स समिट का आयोजन कर रहा है। सभी भारतवासी भारत में आपका स्वागत करने के लिए बहुत ही उत्सुक है। आपकी यात्रा से हमारे द्विपक्षीय संबंधों को भी बल मिलेगा और ब्रिक्स के अंतर्गत संवाद और सहयोग भी सशक्त होगा।
0: रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने इस बात पर इत्मीनान का इजहार किया कि भारत और रूस के ताल्लुकात खुसूसी और मुमताज शराकतदारी के उसूलों की बुनियाद पर मुसलसल मजबूत हो रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने आज ईरान, जमहूरिया किर्गिस्तान और आर्मेनिया के रहनुमाओं के साथ भी दोतरफा मीटिंगें की। ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पेजिशकियान के साथ मीटिंग के दौरान दोनों रहनुमाओं ने मगरबी एशिया खित्ते के मौजूदा हालात व वाकयात और बदलते हुए मंजरनामे पर तबादले ख्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी पर तशवीश का इजहार किया और भारत के इस मुस्तकिल मौकफ का इयादा किया कि बातचीत और सिफारतकारी के जरिए ही तमाम मसाइल का हल होना चाहिए। बहरी जहाजों की आमोदरफ्त और तिजारत की आज़ादी के तहफ्फुज पर जोर देते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि शहरियों और सिविल बुनियादी ढांचे बशमूल तिजारती जहाजों और मल्लाहों को किसी भी सूरत में नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म मोदी और जमहूरिया किर्गिस्तान के सदर सदोर जापारोव ने दोतरफा ताल्लुकात की पेशरफ्त का जायजा लिया और दोनों ममालिक के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इरादा किया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी और आर्मेनिया के उनके हम मनसब निकोल पेशिनियान ने दिफा, मईशत, दवासाजी, साइंस और टेक्नोलॉजी, सकाफत और तालीम समेत मुख्तलिफ शोबों में दोतरफा तआवुन को मजीद मजबूत बनाने के तौर तरीकों पर भी बातचीत की। आज वस्ती एशियाई मुल्क के अपने दौरे के पहले दिन वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने बिश्केक में फ्रेंड्स ऑफ इंडिया ग्रुप के अराकीन से भी मुलाकात की। اس موقع پر بھارت کے ساتھ مختلف شعبوں میں کام کرنے والے 4 وفود موجود تھے۔ جمہوریہ کرغستان کے کل اپنے دورے کے آخری دن وزیر اعظم مودی شنگھائی تعاون تنظیم کے 26ویں سربراہ اجلاس سے خطاب کریں گے۔ وزیر اعظم مودی کل ازبکستان کا کامیاب دورہ مکمل کرنے کے بعد بشکیک پہنچے تھے۔ بھارت کی اصل جی ڈی پی میں مالی سال 2026-27 کی پہلی سہ ماہی میں 7.8% کی بڑھوتری درج کی گئی ہے۔ گزشتہ سال اسی سہ ماہی میں 6.9% کی بڑھوتری درج کی گئی تھی۔ بھارتی معیشت نے ناسازگار حالات کے باوجود ترقی کی رفتار کو برقرار رکھا ہے۔ نومینل جی ڈی پی میں بھی موجودہ مالی سال کی پہلی سہ ماہی میں 10.3% کا اضافہ درج کیا گیا ہے۔ اعداد و شمار اور پروگرام کے نفاذ کی وزارت نے آج موجودہ مالی سال میں اپریل سے جون تک کی پہلی سہ ماہی میں جی ڈی پی کے تخمینے جاری کیے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے مالی سال 2026-27 کی پہلی سہ ماہی میں 7.8% کی بڑھوتری کو مثالی اور بڑا کارنامہ قرار دیا ہے۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں وزیر اعظم نے کہا کہ یہ کامیابی تیل کی قیمتوں کے دباؤ، سپلائی چین میں رکاوٹ اور عالمی سطح پر غیر یقینی کی صورتحال کے باوجود ملک کے عوام کی اجتماعی طاقت اور مضبوطی کی عکاسی کرتی ہے۔ اس دوران مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے کہا کہ اس مضبوط کارکردگی کا سہرا ملک کے عوام اور ان کی سخت محنت کو جاتا ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ این ڈی اے سرکار کی جانب سے کی گئی اصلاحات اور معیشت کے مؤثر اور پائیدار انتظام کے مثبت نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ خدمات کی پیداوار کے اشارے آئی ایس پی کے تحت جون 2026 کے دوران 19 میں سے 18 ذیلی شعبوں میں سالانہ بنیاد پر اضافہ درج کیا گیا ہے۔ 8 شعبوں میں 2 ہندسے کی شرح نمو درج کی گئی ہے۔ اعداد و شمار اور پروگراموں پر عمل درآمد کی وزارت کی جانب سے جاری کردہ ذیلی شعبہ جاتی عارضی آئی ایس پی اعداد و شمار کے مطابق ریئل اسٹیٹ کا شعبہ 24.7% کی شرح نمو کے ساتھ سب سے آگے رہا، جبکہ خوردہ کاروبار میں 18% کا اضافہ ہوا۔ تھوک کاروبار میں 15.1%، انتظامی اور معاون خدمات میں 14.4% اور آئی ٹی اور کمپیوٹر سے وابستہ خدمات میں 13.5% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔

0: सोन नदी के पानी की तकसीम के मामले पर बिहार और झारखंड के दरमियान आज नई दिल्ली में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की मौजूदगी में एक मफाहमतनामे पर दस्तखत किए गए। इस मौके पर झारखंड के वजीर आला हेमंत सोरेन, बिहार के वजीर आला सम्राट चौधरी और जल शक्ति के वजीर सीआर पाटिल भी मौजूद थे। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि बिहार और झारखंड के दरमियान इस माहदे से मशरकी भारत में लंबे अरसे से जारी पानी का मसला हल हो गया है। उन्होंने मजीद कहा कि इस माहदे से बिहार और झारखंड के दही इलाकों में लाखों किसानों को आबपाशी के लिए पानी दस्तियाब होगा। इसके साथ ही अवाम के लिए पानी पीने का पानी भी फराहम किया जा सकेगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज कहा कि टेक्सटाइल और मलबूसात का शोबा न सिर्फ भारत के सकाफती विरसे का अहम जुज है बल्कि ये लाखों लोगों को रोजगार भी फराहम करता है। सदर जमहूरिया आज दिल्ली में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी निफ्ट के जलसे तकसीम असनाद से खिताब कर रही थीं। मोहतरमा मुर्मू ने तलबा से कहा कि वो मुल्क के मालामाल सकाफती विरसे और इकदार से जुड़े रहते हुए आलमी नुक्ते नजर को अपनाएं। फैशन इंडस्ट्री में खवातीन के बढ़ते हुए रोल पर जोर देते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि तकरीब में मौजूद तकरीबन 4,000 तलबा में लगभग 85% खवातीन हैं।
1: फैशन टेक्नोलॉजी भी ऐसा क्षेत्र है जिसमें विश्व स्तर पर भारत की भूमिका बढ़ाने को अपार संभावना है। आपको इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। इस प्रयास में आप स्मरण रखें कि आपकी सोच वैश्विक हो लेकिन आपकी जड़ें अपने मिट्टी की विशिष्टता और जीवन मूल्य से जुड़े। इस तरह आप न केवल सक्सेसफुल प्रोफेशनल बनेंगे बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन में भी अपना योगदान दे सकेंगे।
0: सदर जमहूरिया ने कहा कि भारत में फैशन और टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी के शोबे में आलमी सतह पर अपनी मौजूदगी बढ़ाने की बेपनाह सलाहियत मौजूद है। मोहतरमा मुर्मू ने तलबा पर जोर दिया कि वह मुल्क के रिवायती टेक्सटाइल विरसे को जदीद बाजारों और नई टेक्नोलॉजीज से जोड़ने के लिए अपने इल्म, महारत और तख्लीकी सलाहियतों को बरूए कार लाएं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। हुकूमत ने आज मुल्क में चिप तैयार करने के इको निजाम को फरोग देने के लिए 1.27 लाख करोड़ रुपए के खर्च से सेमिकॉन 2.0 स्कीम को नोटिफाई कर दिया है। नई दिल्ली में सहाफियों को जानकारी फराहम करते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी महकमे के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस कदम से आने वाले वर्षों में भारत आलमी सतह पर सेमीकंडक्टर सनत में तकरीबन 10% हिस्सेदारी हासिल कर सकता है और आलमी सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन में उसका रोल मजीद बढ़ सकता है। जनाब वैष्णव ने मजीद कहा कि हुकूमत की तवज्जो मुल्क को आलमी सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन में वेफर्स की तैयारी से लेकर चिप की पैदावार तक मजबूती से शामिल करने पर मरकूज है। सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम 2.0 के तमाम 6 अहम बुनियादी अज्जा का नोटिफिकेशन जारी करने के बाद जनाब वैष्णव ने कहा कि आलमी सेमीकंडक्टर सनत के शराकतदारों में इस बात का एतमाद बढ़ रहा है कि आने वाली दहाइयों में बड़ी सरमायाकारी के लिए भारत एक मौजू और पसंदीदा मकाम है। इस दौरान इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन IESA ने आज सेमिकॉन 2.0 के बाजाब्ता नोटिफिकेशन का खैर मकदम करते हुए इसे सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम की कामयाबी के लिए अहम पेशरफ करार दिया। एसोसिएशन ने अपने बयान में कहा कि ये जामे हिकमत अमली भारत की सेमीकंडक्टर सलाहियतों को नुमाया तौर पर मजबूत और बड़े पैमाने पर सरमायाकारी को रागिब कर सकती है। इसके अलावा आला कदर वाली मुलाजमतें पैदा कर सकती है और भारत को एक काबिल एतमाद आलमी सेमीकंडक्टर शराकतदार के तौर पर मजीद मुस्तहकम कर सकती है। IESA के सदर अशोक चंदक ने कहा कि भारत अब अपनी साख कायम करने के मरहले से आगे बढ़कर हकीकी सलाहियत पैदा करने की जानिब गामजन है और मजकूरा पॉलिसी का तसलसल इस सफर को आगे बढ़ाने में अहम रोल अदा करेगा। नेपाल में अचानक आने वाले तबाहकुन सैलाब के बाद बचाव कार्रवाई में मसरूफ सिक्योरिटी एहलकारों को खसूसी आलात, लाशों के लिए थैलों, रस्सियों और हेलीकॉप्टरों की कमी के बायस शदीद मुश्किल का सामना है। बावर किया जाता है कि यह सैलाब 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सरहद के करीब बर्फ और चट्टानों के तोदे गिरने के सबब आया। सैलाब ने भोटे काशी दरिया से मुतसिल इलाकों में घरों, सड़कों और पुलों को तबाह कर दिया और पनबिजली प्रोजेक्टों को भी नुकसान पहुंचाया। कुदरती आफात की रोकथाम और बंदोबस्त से मुतालिक कौमी अथॉरिटी के मुताबिक सैलाब और मिट्टी के तोदे गिरने से हलाकतों की तादाद बढ़कर 903 हो गई है जबकि 4,247 से ज्यादा अफराद अब भी लापता हैं। नेपाल के वजीर आजम बालेंद्र शाह ने इस सैलाब को गैर मामूली तबाहकुन कुदरती आफत करार दिया है। तकरीबन 21,000 सिक्योरिटी एहलकार बचाव कार्रवाईयों में मसरूफ है। भारत ने नेपाल में बचाव और राहत के कामों और

0: नमस्कार दोस्तों, चर्चा के साप्ताहिक मंच पब्लिक स्पीक में आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं हूँ
1: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
2: आज फिर जीने की तमन्ना है।
1: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
3: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
1: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
3: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हूँ, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
1: ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।

0: आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें एक ऐसे अभिनेता की जिसके रुपहले पर्दे पर आते ही न जाने कितने दिल धड़क जाते थे। जी हाँ, वो हैंडसम तो थे पर वो हीरो नहीं थे, और ये जो दिल धड़कते थे ये रोमांच में नहीं धड़कते थे बल्कि किसी आशंका में धड़कते थे। क्योंकि आज के फनकार कार्यक्रम में आज हम बातें कर रहे हैं हिंदी फिल्म संसार के एक खूंखार और दबंग विलेन की, जिनका नाम है के एन सिंह।
1: मैं कहता हूं छोड़ दो से,

0: के एन सिंह का जन्म 1 सितंबर 1908 को देहरादून में हुआ था। के एन सिंह का पूरा नाम था कृष्ण निरंजन सिंह। पिता चंडीदास एक जाने माने क्रिमिनल लॉयर थे और चाहते थे कि बेटा भी उनकी तरह एक क्रिमिनल लॉयर ही बने, पर ऐसा न हुआ। के एन सिंह पढ़ने के लिए लखनऊ भेजे गए। वहां उनकी दोस्ती हो गई कुंदन लाल सहकल से।
1: hey,

पढ़ाई खत्म करके केएन सिंह देहरादून आ गए। पिता चाहते थे कि बेटा जल्दी से अपने पैरों पर खड़ा हो जाए और बेटे ने भी कई काम आजमाए। कृष्ण निरंजन ने कभी लाहौर जाकर प्रिंटिंग प्रेस स्थापित कर दिया तो कभी राजे रजवाड़ों के पालने के लिए जंगली जानवरों की सप्लाई की। इसके अलावा फौज में खुखरी की सप्लाई का धंधा भी किया, पर ये कोई भी कारोबार उनके मन के मुताबिक नहीं था, इसलिए एक भी काम में कृष्ण निरंजन जमे नहीं। इस तरह से पिता परेशान होते रहे कि न जाने ये बेटा आगे चलकर क्या करेगा, किसी काम में इसका मन नहीं लग रहा है। इससे तो अच्छा ये होता कि ये लंदन जाकर बैरिस्टर की पढ़ाई करता और मेरी तरह वकील बन जाता। पिता ने ये सोचा कि किसी तरह से इस लड़के को जिम्मेदार बनाया जाए और इस तरह से सन 1930 में कृष्ण निरंजन की शादी करवा दी गई।

शादी के कुछ दिन के बाद कृष्ण निरंजन ने केसर या जाफरान की सप्लाई का धंधा शुरू किया। ये काम फलने फूलने लगा, परिवार में खुशियां लौट आईं। पिता को लगा कि बेटा अपनी जिंदगी में जम रहा है। पर इसी दौरान कृष्ण निरंजन की पत्नी बीमार पड़ गईं। ये वो दौर था जब चिकित्सा सुविधाएं उतनी उपलब्ध नहीं थीं और इंजेक्शन आम आदमी तक नहीं पहुंचा था। जब तक पत्नी की बीमारी की सही वजह पता चलती, पत्नी का निधन हो गया। पत्नी की बीमारी और उसके इलाज में उलझे के एन सिंह अपने कारोबार पर ध्यान नहीं दे पाए और उनके साझीदारों ने उनके बिजनेस पर कब्जा जमा लिया। इसके बाद जैसे तैसे के एन सिंह ने एक नया काम शुरू किया। उन्होंने एक अंग्रेज लड़की के साथ मिलकर रुड़की में एक स्कूल खोला, पर वो भी नहीं चल पाया। फिर बासमती चावल की सप्लाई का धंधा शुरू किया, वो भी नहीं चला। इसके बाद हुआ ये कि के एन सिंह खेलों के मैदान की तरफ मुड़ गए। सन 1936 के बर्लिन ओलंपिक्स के लिए वो जेवलिन थ्रो और

छिटपुट स्पर्धाओं के लिए भारतीय टीम में चुने गए थे, पर ऐन मौके पर हुआ ये कि उनकी बहन की आंख का ऑपरेशन किया जाना था। चूंकि उनके जीजाजी उपलब्ध नहीं थे और के एन सिंह कुछ खास कर नहीं रहे थे, इसलिए उन्हें भेज दिया गया कोलकाता बहन का इलाज करवाने में मदद करने के लिए। इसी वजह से के एन सिंह 1936 के बर्लिन ओलंपिक में हिस्सा नहीं ले पाए। चूंकि के एन सिंह कोलकाता जा रहे थे तो एक दोस्त ने पृथ्वीराज कपूर के नाम एक चिट्ठी लिखकर दे दी और ये कहा कि हो सकता है इस तरह तुम्हारा कोई काम बन जाए।

कि एनसिंग को याद आया कि यहाँ तो उनके बचपन का दोस्त कुंदन लाल सहगल भी है जो फिल्मों में स्टार बन चुका है। के एनसिंग ने पृथ्वीराज कपूर और कुंदन लाल सहगल से मुलाकात की। पृथ्वीराज कपूर ने के एनसिंग को देवकी बोस से मिलवाया। देवकी बोस उन दिनों चंडीदास, पूरन भगत, राजरानी मीरा जैसी कामयाब फिल्में बना चुके थे और अपनी बांग्ला फिल्म सोनार संसार का हिंदी संस्करण बना रहे थे। सन 1936 सुनहरा संसार फिल्म के जरिए के एन सिंह की फिल्म यात्रा शुरू हुई। इस फिल्म में उन्होंने एक डॉक्टर की छोटी मोटी भूमिका निभाई थी। बस यहां से खेल का मैदान पीछे छूट गया और कुंदन लाल सहगल फिल्मों में रमने लगे। A.R. कारदार को कुंदन लाल सहगल बड़े पसंद आए। वो उन्हें अपने साथ कोलकाता से मुंबई ले आए और सन 1938 में फिल्म बागबान में उन्हें एक्टिंग का मौका दिया। ये फिल्म 50 हफ्ते चली और के एन सिंह जम गए। के एन सिंह की बड़ी बड़ी डरावनी आंखें, देर तक पलके न झपकाना, कोट पैंट टाई हैट और मुंह में पाइप या सिगार, कुल मिलाकर ऐसी शख्सियत बनती थी जो काफी असरदार, दबंग और डरावनी थी। बस इन्हीं तेवरों की वजह से के एन सिंह विलेन के रोल करने लगे। सन 1951 में राज कपूर की फिल्म आवारा में उन्होंने जग्गा डाकू की भूमिका निभाई।

अपने इंटरव्यूज में वो जग्गा डाकू की भूमिका के लिए ख्वाजा अहमद अब्बास की बड़ी तारीफ किया करते थे। वो ये कहते थे कि रोल इतना अच्छा लिखा गया था कि तारीफ उन्हें मिलती रही इस भूमिका को निभाने के लिए। राज कपूर की फिल्म बरसात में के एन सिंह ने भूलू का किरदार निभाया था।

0: है। बोलो
1: पैसे
0: इतने सवेरे कैसे आ गए?
1: चल मेरे साथ चल, जल्दी चल।
0: लेकिन बात क्या है?
1: अरे उठ तो सही, जल्दी चल।
0: अरे मुझे अपने पाँव से चलने, मैं खुद चलूंगा। अरे जिंदा तो है अभी।
2: हाँ।
0: देख पंजनारे के 8-10 फूल तोड़ ला।
2: हाँ।
0: और बूटी मिलते ही उल्टे पर लौटा।
2: हाँ।
0: लेकिन देख बूटी जा चुका कर लाइयो।
2: हाँ।
0: जल्दी से आ जल्दी।

0: सुबह ये काम तो खत्म हो चला, तू जरा अच्छी तरह इसका ध्यान रखियो। हाँ ये लिप सूख जाए तो और लगा देना, मैं शाम को आऊंगा। जरा मेरा हाथ धुलाइयो भाई।
1: ओहो मगर कहाँ जाओगे वे जी से इस तरह छोड़कर?
0: नगीने की शादी कराने जा रहा हूँ, अब तो पक्के मुहूर्त का वक्त आ गया।
2: नगीने शादी? बैजी
0: अरे कुछ कहेगा भी?
2: मेरी शादी कभी नहीं हो सकती।
0: अरे जालिम, तुझसे शादी करके कौन अपने हड्डियों को चूर कराएगी?
2: अभी पक्की नहीं तो कच्ची शादी करा दो, क्यों बैजे?
0: अच्छा अच्छा इंतजार करो, तेरे लिए भी भगवान कहीं से छप्पर फाड़ के भेज देंगे तो फिर हो जाएगी तेरी भी शादी।
3: बैजी अगर छप्पर के बजाय पानी के रास्ते भेज दे तो कोई हर्ज
0: है? ठीक है भेज देंगे।
2: ये कितने दिनों में जिंदा हो जाएगी?
0: बस ये कोई 15-20 दिन।
2: बैजी भगवान देखो जरूर है।
0: क्यों?
2: देख लो दरिया में बहा कर भेज दी उसने बहु मेरे लिए।
0: हाँ भाई सुना तो था कि जब भगवान देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते, लेकिन आज तो उन्होंने दरिया फाड़ कर दे दी तुम्हें ये परी।
3: बैची है तो बड़ी खूबसूरत क्यों?
0: हाँ भाई ये तो अपनी अपनी किस्मत की बात है, मुझे तो जिन वाली कहानी याद आती है जो कोका के परी को उठा लाए।
4: शक्ति सामंत को के एन सिंह बड़े पसंद थे, इसलिए अपनी हर फिल्म में वो उनके लिए कोई ना कोई रोल जरूर रखा करते थे। फिल्म इंस्पेक्टर, बद्री प्रसाद की भूमिका। फिल्म हावड़ा ब्रिज, प्यारे लाल की भूमिका। फिल्म एन इवनिंग इन पेरिस, के एन सिंह नजर आए जैक की भूमिका में। हुआ ये कि अपने दबंग अभिनय की वजह से के एन सिंह चोटी के खलनायक बन गए। उनकी गिनती प्राण, कन्हैया लाल और जीवन जैसे खलनायकों के साथ होने लगी। आगे चलकर प्रेम चोपड़ा, रणजीत, अजीत, अमजद खान, डैनी और न जाने कितने खलनायक आए, पर के एन सिंह एक चोटी के खलनायकों के रूप में गिने जाते रहे।

0: फिल्म हुमायूं में महबूब खान ने उन्हें एक दिलचस्प किरदार दिया था। अशोक कुमार के साथ वो नजर आए चलती का नाम गाड़ी में।
1: अजय सुना सरदारा कि

0: अरे वाह, अरे वाह, वाह, वाह, वाह।
1: शक्ति सामंत की फिल्म हावड़ा ब्रिज के एन सिंह की यादगार फिल्म है।

चिनप्पा देवर की फिल्म हाथी मेरे साथी, गुरुदत्त के साथ फिल्म बाजी, राज खोसला की वो कौन थी, फिल्म आम्रपाली में के एन सिंह बलभद्र सिंह की एक जबरदस्त भूमिका में नजर आए थे, फिल्म दूल्हा दुल्हन में वो बने थे ठाकुर धर्म सिंह, फिल्म मेरा साया में वो वकील की भूमिका में थे।

इस कार्यक्रम में शामिल किए गए थे उन फिल्मों के गाने जिनमें के एन सिंह एक जबरदस्त भूमिका में नजर आए। फिल्म पगला कहीं का में वो मैक्स की भूमिका में नजर आए। सन 1938 में आई फिल्म सुनहरे दिन से लेकर 90 के दशक तक तकरीबन 55 सालों का लंबा करियर रहा कृष्ण निरंजन सिंह का, और वो लोगों के दिलों पर राज करते रहे। किसी भी फिल्म में जब के एन सिंह की एंट्री होती तो लोगों का दिल थक से रह जाता कि अब कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर होने वाला है। 50 और 60 के दशक में तो के एन सिंह जबरदस्त कामयाबी की लहर पर सवार थे, पर हर कामयाबी की लहर एक दिन खत्म भी होती है। ऐसा भी हुआ कि आखिरी दिनों में उनकी आंखों की रोशनी कमजोर हो गई थी। के एन सिंह के करियर का कमाल देखिए कि फिल्मों की कई पीढ़ियों ने उनके साथ काम किया। पृथ्वीराज कपूर के साथ उन्होंने काम किया तो राज कपूर के साथ भी, और सन 1975 में राज कपूर के बेटे ऋषि कपूर के साथ भी वो नजर आए रफू चक्कर में। जहां कुंदनलाल सहगल, मोतीलाल, दिलीप कुमार, देव आनंद और गुरुदत्त के साथ काम किया, वहीं सुनील दत्त और मनोज कुमार के साथ भी काम किया। यहां तक कि उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ भी काम किया फिल्म कालिया में। सन 1983 में फिल्म कालिया आई, यहां तक अभिनय से के एन सिंह का मन पूरी तरह से उचाट होने लगा था। चूंकि उनकी कोई संतान नहीं थी, उन्होंने अपने भतीजे पुष्कर को बेटे की तरह पाला और आखिरी दिनों में उसी ने उनकी देखभाल की। सन 1999 में वे फिसल कर गिर गए और पैर की एक हड्डी टूट

गई। इसके बाद 31 जनवरी सन 2000 तक वो केवल बिस्तर पर ही रहे बीमारी की अवस्था में। सन 2000 में 31 जनवरी को इस कद्दावर अभिनेता ने इस असार संसार को अलविदा कह दिया। फिल्म अजूबा सन 1991 में आई थी और ये के एन सिंह की आखिरी फिल्म बन गई।

0: शूद आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता, सिर्फ विविध भारती पर।